0: आ गया कि कोई औरत किसी मर्द से बात न करे, या औरत की आवाज ही का पर्दा है इसलिए वो किसी से बात नहीं कर सकती।
1: नहीं,
0: आप घर में हैं, शौहर घर पे नहीं, इसलिए कि हर वक्त शौहर घर पे रह नहीं सकते। आप घर में हैं, कोई साहब आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं अपने किसी जरूरी काम से, हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों में से ही हो लेकिन महरम ना हो, तो क्या उस मौके पे जवाब न दिया जाएगा? इसी तरह अगर घर के बाहर आप गार्ड रख लें कि मैं बात नहीं करूंगी, गार्ड ही जवाब देगा, तो क्या आप गार्ड से बात नहीं करेंगी? या इसी तरह अगर बच्चा बीमार है, आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो किसी मर्द डॉक्टर से अपना या बच्चे का इलाज नहीं कराएंगे, बात नहीं करेंगे? इसी तरह अगर आप किसी सवारी पे बैठ के जा रहे हैं तो ड्राइवर से बात नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे कि आपको कहां जाना है? अगर आपको बवक्ते जरूरत कोई चीज खरीदने की जरूरत पेश आई है, तो क्या आप सब्जी वाले से, गोश्त वाले से या किसी और दुकान वाले से बात नहीं करेंगे? बात करेंगे। लेकिन जिस चीज से मना किया जा रहा है वो क्या है? फला तख्दा न बिल कौल, इस तरह बात ना करो कि जिस तरह अपने महरम रिश्तेदारों से बात करते हो, अपने शौहर से या बेटों से बात करते हो, या अपने औरतों से बात करते हो, उस स्टाइल में मर्दों से बात ना करो। एक फर्क होना चाहिए, और ये फर्क सबसे पहले दिल में आए, ये फर्क दिल में आए और दिल से फिर जबान पे आए। अच्छा, यहां ये भी नहीं कहा गया कि करख्त लहजे में बात करना, ये नहीं कहा गया, बल्कि जिस चीज से मना किया गया है वो खास स्टाइल लजाने का, शर्माने का और अदाएं दिखाने का, या स्टाइल से बोलने का, उस चीज की तरफ इशारा है। ये नहीं कहा गया कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, या शाउट करना, या गधे किसी आवाज की तरह बोलना, जो अनकरुल अस्वाद कहा गया। और अनकरुल अस्वाद में ये चीज भी आती है ना कि कोई आराम से बात करा तो आप उससे ज्यादा ऊंची आवाज में उसको जवाब दें चीख चिल्ला के, क्योंकि वो आपके करीब भी खड़ा हो तो उसी वॉल्यूम से बोलेगा जितना कि दूर से बोलने की जरूरत होती। और साथ ही मजीद वजाहत कर दी गई कि वकुल न कौल मारूफा, और कहना बात मारूफ। मारूफ का माना कुरान पाक में आपने कई जगह पढ़ा है, मसलन जहां ये कहा जाता है अमर बिल मारूफ, तो मारूफ का क्या माना है? नेकी का हुक्म, यानी भली बात कहना, नेकी की बात कहना जिसमें कोई खराबी ना हो। फिर इसी तरह मारूफ का एक माना होता है उर्फ से, कायदे की, वो चीज जिसमें कोई बुराई ना हो, यानी जिसका बयान करना कोई बुरे माने ना रखता हो। मारूफ चीज यानी आम रूटीन की बात, कुल ना कौलम मारूफा, मतलब लेन देन में जो मारूफ रोजमर्रा की गुफ्तगू होती है, जो इंसान किसी के सामने भी कर सकता है, जिसको करने के लिए तन्हाई नहीं चाहिए, यानी एक मारूफ लहजे में अगर इंसान बात कर रहा है तो वो किसी वक्त भी कर सकता है। फिर मारूफ में काम की बात है, यानी बेकार की बातें और गपशप और हंसी मजाक ये चीज ना हो। वकुल न कौलम मारूफा, तो अगर ये मना होता कि औरत किसी मर्द से बात ही ना करे तो कुल ना अमर का सीगा आता ही ना, फिर ला तकुल ना आता। तो कुल्ला से माना क्या है कि बात कर सकती है, यानी औरत की आवाज पर्दा नहीं है, औरत मर्द से बात कर सकती है लेकिन इन शरायत के साथ, यानी नेकी की, तकवा की। आप देखें कि अजवाज मुतहरात हो या आम सहाबियात हो, क्योंकि जब अजवाज मुतहरात की मिसाल दी जाती है तो बहुत से लोग कहते हैं वो तो उम्मत की माएं थी, उनका मुकाबला क्यों करते हो? मुकाबले की बात नहीं, उनकी पैरवी की बात है। नऊज़ुबिल्लाह, कौन ये हैसियत रखता है कि वह अजवाज मुतहरात का मुकाबला करे? लेकिन वो हमारे लिए एक उस्वा हसना भी है, और खासतौर पर औरतों के मसाइल में, जैसे मर्दों के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं, औरतों के लिए भी अंबिया अलैहिस्सलाम आम रोजमर्रा जिंदगी में ईमान, इबादत, अखलाकियात में वही उस्वा हसना है। लेकिन खासतौर पर जो औरतों के मसाइल हैं उनमें औरतों के लिए अंबिया की बीवियों को फिर, और खासतौर पर अज़वाज मुतहरात को हमारे लिए एक नमूना बनाया गया, क्योंकि कहा गया लस्तुन्ना काहद मिनन निसा, और इस रोल का आगे भी मजीद जिक्र आएगा। अज़वाज मुतहरात के अलावा عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر

0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब। माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फलां शायर ने इस लफ्ज को यूज

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: सरकार की गली में FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। सामान ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो बराह रास्त अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समय 3:30 बज चुके हैं, आज मंगल का दिन है और आपको पता है कि गर्मी भी जो है वो ज़ोरों पर है। हवा चलती है लेकिन गर्मी ज़्यादा है, लोगों ने घरों में एयर कंडीशन लगा लिए हैं, उसके अलावा घरों में पंखे, सब ने पंखे भी मार्केट में अब मिलने जो है वो बंद हो गए हैं। दो दिन पहले मौसम ठीक हो गया था लेकिन यहाँ भी मौसम तब्दील होते रहते हैं, जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है पूरी दुनिया की, पाकिस्तान, ईरान की, अमेरिका की, इसराइल की, इसी तरह यहाँ का मौसम भी जो है उसी जंग की हालत में रहता है, तब्दील होता रहता है। लेकिन इस मौसम को लोग इन्जॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, धूप से फ़ायदा उठाते हैं, इस मौसम से फ़ायदा उठाते हैं। बच्चों को चूँकि स्कूलों में छुट्टियां हैं तो इसकी भी एहतियात करनी चाहिए, मासूम बच्चों को धूप में नहीं निकालना चाहिए। तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक जो हैं वो आपको बताएंगे धूप के मतलब, बचाव के मतलब, बच्चों के मतलब और जो सियासी तब्दीलियाँ होती रहती हैं और जो एक नया मौलाना साहब ने कट्टा खोल दिया शोदा के बारे में जो उन्होंने बात की है, सबके दिल जो है वो रंजीदा हैं कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थे। उन्हें जो जब्बर जलसा में बात की है वो एक मजहबी लीडर का बयान इस तरह नहीं आता, वो तो एक किसी गुंडे का बयान आता है, जो जिस तरह कोई सियासी गुंडा होता है जब बयान देता है, किसी मल्ले गली का गुंडा होता है जो बयान देता है। तो मौलाना तो एक बड़े बाइज्जत इंसान है, पार्लियामेंट के मेम्बर कितनी बार बने, कश्मीर कमेटी के मेंबर कितने साल रहे और एक बहुत बड़ी जमात को रन कर रहे हैं, उनके बंदे सेनेट में भी हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, सूबाई असम्बली में भी हैं। तो मौलाना साहब आप स्टेट के मुलाजिम हैं, ये जो MNA है ये आपकी अपनी शिव नहीं, ये आपको स्टेट ने दी हुई है, आवाम ने दी हुई है, आप स्टेट के लिए सारा काम करते हैं। अगर आप स्टेट के खिलाफ गए हैं तो फिर गद्दारी के मुकदमे इसी तरह चलते होते हैं। आप तो बड़े बाइज्जत, बड़े, आपके वालदे मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब बहुत ही काबिल वज़ीर आला रहे वसरात के, तो मौलाना साहब आपने क्या कर दिया, इससे आपको क्या मिलेगा, इस उम्र में, इस उम्र के हिस्से में आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब एक बार फिर आपको दरा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा गफूर साहब आपको, आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गर्मी वाकई टॉप पे है, इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ये 26-27-28 डिग्री है लेकिन फील लाइक जो है वो इससे 1 डिग्री ज्यादा हो रही है। आप धूप में थोड़ी देर ज्यादा खड़े रहे, 3-4-5 मिनट तो आप अनफ विटामिन डी ले सकेंगे और इसके अलावा अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो पानी की कमी आपके जिस्म में बहुत हो जाएगी। इसको जब आपको पसीना आ रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आप बराए मेहरबानी पानी जरूर पिए। देखे कोको कोला या किसी किस्म की जो ड्रिंक है वो हेल्प नहीं करती, इसमें आपको सिट्रस पानी जो है, नमकीन पानी जो है, नींबूदार पानी जो है ये आप पिए, इससे आपको जो है, या आप अगर आपको बहुत तलब है तो आप कावा पी सकते हैं, लाइट कावा जिसे टर्किश कावा कहा जा सकता है, अफगानी कावा कहा जा सकता है, या आप उसको ये कह सकते हैं कि लाइट पाकिस्तानी चाय पी ले, लेकिन कॉफीन वगैरह से इस गर्मी में आप थोड़ा सा एहतियात बरतें क्योंकि कॉफीन जो है वो आपके दिमाग पे असर करती है। ऑलरेडी जब आपके जिस्म में पानी कम होगा तो कॉफीन जो है वो ज्यादा जल्दी असर करेगी। दूसरा, जो हमारे भाई टैक्सियां या गाड़ियां चलाते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने टेम्परेचर जो है उसको माइनस ना करें, उसको क्योंकि एयर कंडीशन चल रहा होगा तो लिहाजा उसको 22-23 पे लाजमन रखें, 21 पे रख लें, इससे कम ना करें क्योंकि इससे आपके टखनों में, घुटनों में, टांगों में, टांगों के मसल्स के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपके जो इलास्टिक है टांगों के वो मुतासर हो सकते हैं, तो इससे आपको काफी प्रॉब्लम होगी। और आप ये याद रखें कि जब आप इतनी धूप में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने साथ पानी जरूर रखें, और अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको तलब होती है तो फाक्से कौंडी ले लें, या आप इस तरीके से, मैं उनका एजेंट तो नहीं हूं लेकिन ये एक बेस्ट चीज है जो आपको शुगर दे सकती है, ये कोको कोला और दूसरी पेप्सी वगैरह से बेहतर है। लेकिन अगर आप पानी रख लें, सिट्रस वैंड रख लें, तो वो आपको ज्यादा जो है वो आपके जिस्म में असरात करेगी। और अगर आप नींबू पानी रख लें तो वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा खुद जाती तजर्बा और मैंने लोगों से भी सीखा हुआ है कि जब आप ड्राइव करते हैं और धूप हो और अंदर एयर कंडीशन लगा हो, तो आपको बहुत जल्दी जो है वो नींद आनी शुरू हो जाती है। और जब आपको नींद आती है तो आप समझते हैं कि आप कंट्रोल कर लेंगे, आपकी आंखें खुली है, लेकिन जब आपका दिमाग आपके साथ काम नहीं करता और सेकंड्स के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए प्लीज अगर आप पानी पी रहे होंगे तो आपका पानी जो है वो तवाजन बरकरार रखेगा बॉडी के अंदर, तो आप फ्रेश रहेंगे। तो बच्चों को और बूढ़ों को तो पानी जो है वो मस्ट पीना चाहिए, हर आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद बच्चों को पानी पिलाएं, खुद भी पानी पिए, क्योंकि ये जो गर्मी है, बच्चे बता तो नहीं सकते, बेबीज और बच्चे बता तो नहीं सकते, लेकिन पानी कोशिश करें कि पिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी एहतियात करें। और ये जो लावा आया हुआ है, ये आया तो बाहर से ही है, लेकिन आप इसको कहते हैं कि ये दोस्की लावा इसको कहा जाता है, हमारी जबान में जहन्नम का कीड़ा कहेंगे, यानी गोल, एक किस्म की गोल है, हमारे पंजाबी जबान में इसको बंबू काट कहते थे। ये ज्यादातर शतूत के दरख्तों पे और ये जो होते थे आम के दरख्त या जो जामुन के दरख्त होते थे इनके ऊपर या किसी दूसरे मीठे फ्रूट के ऊपर ये बहुत ज्यादा पाए जाते थे, और इसके हल भी जो थे लोगों के पास उस जमाने में होते थे। लेकिन अब क्योंकि ये डेनमार्क में आ गया है, फ्यून के अंदर जो है पूरे जजीरे के अंदर ये फैला हुआ है, यहाँ आमाबे भी है और यूलैंड के कुछ कम्यूनों के अंदर है, तो आप यहाँ सफर कर रहे हैं, छुट्टियां करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें। और ये लावा सिर्फ दरख्तों पर नहीं रहता, ये बागात के अंदर घूमता फिरता भी है, लिहाजा अगर आप किसी को देखें कि आपने लावा इसको नजर आ गया है, तो आप फौरन से पहले जो है अपने गवर्नमेंट को इतला करें, आप पुलिस को इतला कर सकते हैं या आप अपनी कम्यून को इतला कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप तो बच गए हैं लेकिन दूसरे को बच्चे या कोई और बंदा जो है वो उसको टच कर लेगा या उसके बाल जो है वो हवा में उड़ के
0: उसके। ये तो आप एहतियात है, ये तो लोगों को अब करनी चाहिए, आप बताते रहते हैं बाकायदगी से, लेकिन शाह साहब ये जो गर्मियों में सियासी बीमारियां आ गई हैं, सियासत बिल्कुल खामोश है, और आपको पता है कि लिस्टें भी बन गई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप दे रहे हैं कि हमें किसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा, जो लिस्टें बनती जा रही हैं, ज़रा ये हमारे सामने नाज़रीन से शेयर तो करें।
1: देखिए जी, इस वक्त हालात जो है वो ये है कि अगर आज हमने गैदरिंग ना की, अब हेट इस तरह बढ़ रही है कि डेनिश यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर जो डेनमार्क डेमोक्रेट का मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसने यूरोपियन पार्लियामेंट में खड़े होकर एक नफरत अंगेज, मैं उसके पूरे वर्ड नहीं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आजकल अगर ऐसी चीजें लिखी जाए तो उससे आप पे केस भी बन सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे। तो ये जो वर्ड्स उसने कहे, उसके ऊपर स्वीडन का उसका एक कुलीग जो अरबी मुसलमान है, उसने उसकी ये स्पीच वहां पे देखी और उसने इसको फौरन से पहले, वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसने स्वीडन से, तो उस अरबी ने इसको, स्वीडिश है, मैं अरबी सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन है वो अरबी नस्ल, लेकिन वो है स्वीडिश, उसने इसको पुलिस एडमिट कर दिया और उसके ऊपर केस बन गया। अब ये अदालत का फैसला है, क्योंकि ये पूरे यूरोप में इस बात को उठाया जा रहा है, और अब डेनमार्क के अंदर भी आज और कल ये फैसले हुए हैं कि भाई यहाँ की जो तंजीमात हैं, खसूसी तौर पे मेंस का गाड़ी की जो इंसानी हकूक की जो तंजीमात हैं, उनको शर्म आ गई है कि वो शर्मा गए राजा साहब कि ये मुसलमान जो हैं, ये जो फॉरनर्स हैं, इनके अंदर इतनी तंजीमें होने के बावजूद ये आवाज नहीं उठा रहे, तो हम आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो साल या दो साल के ऊपर जो सजा आप देखें साल के ऊपर, और लोगों को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे, یہ ظالمانہ ہے اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور اس پہ آواز اٹھائی جائے، اس پہ بحث کی جائے۔ تو اب انہوں نے یہ آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے کسی سیاستدان کے بارے نے اس پہ نہیں لکھا، کوئی کچھ، کوئی ہمارے نظریاتی جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال میں اس وقت دھوپ میں کہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہوں گے، کہیں گرل کھا رہے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں احساس کہ وہ آنے والی نسلوں کے بارے میں اگر دو منٹ کے لیے کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ لوگوں کو آگاہی دے، تو یہ ایک بہت ظلم کی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، یہ پچھلی دفعہ بھی پی ڈی ایم تھی، انہی کے ذریعے جی رہی تھی، اب ایسی حکومت ہے جو ساری کی ساری فارنر کے ووٹوں سے بنی ہے، فارنرز کے حمایت سے بنی ہے، اور وہی فارنرز کی حمایت سے بننے والی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے اب تار بطور حملے جو ہے وہ مسلمانوں پہ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر اب نظریاتی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرین لینڈ کا جو مسئلہ آ رہا ہے اس سے پہلے ہی ہم ایسی نفرت ان کے اوپر ان کے درمیان کھڑی کر دیں کہ یہاں پہ دیکھیں آج کل ڈینش جو ہیں وہ خود اپنی ڈینش سیاسی اور ایسے راشسٹوں کا جواب وہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راشسٹ نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ جب یہ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری جو تنظیمات ہیں، جو ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے اسلامک فائننگ بنی ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سارے جوڑ کے بیٹھ جائیں اور فوراً سے پہلے اس کے اوپر کرکے منسٹری، چرچ منسٹری جس کو کہتے ہیں، اس سے اور کلچر منسٹری سے فوراً سے پہلے بات کریں۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ۔ میں اگلے دن ایک ریڈیو پہ سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ چھٹیاں ہوئی ہیں، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ کاموں میں لگا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، آپ فورن منسٹری میں ٹیلی فون کریں گی، وہاں کی بہت سروس ہے، وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی آج بھی دے رہے ہیں فورن منسٹری میں، اسی طریقے سے انریس منسٹری، جسٹس منسٹری اور کلچر اور دوسری منسٹریوں میں بھی جو امبس مین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کو میل بھیجتے ہیں، کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ کمپلینٹس کو کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہیں اگر وہ اب ایکٹیو نہیں ہوتی اور یہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہمیں کیا، تو کل کو جو یہ چیزیں ہیں، یہ جو نفرت ہے، خدا نہ کرے یہاں پہ بیلفاسٹ والا، انگلینڈ والا مسائل یہاں پہ ہونے شروع ہو جائیں، یہاں جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے، اگر ایسی چیزیں یہاں پہ ہو جائیں تو پھر ہم لوگ تو بہت ہی کم لوگ ہیں اور پرامن لوگ ہیں ہمارا۔
0: ہماری جو سوچ ہے نا، ہماری سوچ اپنے مزاج کے مطابق ہے نا، جو مرضی ہوتی ہے اس طرح ہم سوچتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، صحت کے لحاظ سے آپ بات کرتے رہتے ہیں، کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، مینگو فیسٹیول ہو رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آزادی ٹورنامنٹ بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں شاہ صاحب چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب ایک کرکٹ میچ ہوا، ایلبرسٹن میں ہوا یا جہاں بھی ہوا، اچھا میچ ہوا، ٹرافیز تقسیم کی گئی، لوگوں نے سپانسر کیا، اچھی بات ہے جو ہے اسپورٹس کو پروموٹ کرنا، لیکن شاہ صاحب جن لوگ ٹیموں نے، جس ٹیم نے یا میچ آرگنائز کیا یا جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد ٹک ٹاک میں بھی یہ آنا شروع ہو گیا جی یہ تو 804 والے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں، میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا، دوسرا ایشو بن جائے گا۔ تو شاہ صاحب ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جب کرکٹ کا میچ ہوا تو اس کو ٹک ٹاک کی شکل میں 804 والی شرٹوں میں کیوں شامل کرتے ہیں ہم لوگ؟
1: جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہاں پہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے یہاں رہتے ہوئے بھی ڈینش پاسپورٹ لیے ہوئے بھی یا بغیر ڈینش پاسپورٹ کے بھی، وہ آج بھی پاکستان اسٹیٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر آپ کو اعتراض آتا ہے، آپ پیپل پارٹی کا برا بھلا کہیں، ان کا صدر ہے، آپ وزیر اعظم کو برا بھلا کریں، وہ نون لیگ کا ہے، اسی طریقے سے کاف لیگ ہماری اس کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے ایم کیو ایم ہے، جو جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں آپ ان کو ضرور برا بھلا کہیں، لیکن جب
0: سیاسی طور پر
1: نہیں، اسٹیٹ کو آپ جو ہے جو ادارے اسٹیٹ کے محافظ ہیں، आप ख्वाब वो पुलिस हो, ख्वाब वो जस्टिस हो, ख्वाब वो अपना फौज हो, कोई भी अदारा ऐसा हो, आप उसको गाली क्लोच नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट के अदारे हैं, उन्हीं की वजह से स्टेट बनती है और वो आपको तहफ़ देते हैं। तो ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लोग क्रिकेट का करते हैं इसी तरीके से अरेंजमेंट जो है अगर वो करना शुरू कर दें, कम से कम एक माह में दो तीन ऐसी अरेंजमेंट करें और उसके अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के उनको सुने, उनको हाईलाइट्स करें, तो उनको बताएं कि यहाँ के कानून जो है हम कैसे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि मेरी फलाने मिनिस्टर के साथ बात हुई, मेरे फलाना पॉलिटिशियन मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा फलाना जो है इतना करीबी है, लेकिन जब आप जब वो आपके आपके आपके बच्चों के लिए और आपके लिए ही वो मुस्तकबिल यहाँ पे तारीख कर रहा है और वो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, वो आपके हकूक के लिए नहीं बोल रहा, आप लोगों ने जिस पार्टियों को वोट दिया है वो पार्टियां ही आपके खिलाफ काम कर रही हैं, ये इलिस लिस्टन, ये एसएफ, ये रेडिकल वेंसा, ये सोशल डेमोक्रेट और ये दूसरी पार्टी जो है अल्टरनेटिव, ये सारी की सारी आपके खिलाफ काम कर रही हैं, आपने इनको वोट दिया है कि इसलिए कि जी हमारे लिए ये बहुत
0: ये खिलाफ काम नहीं कर रही, ये अपने मुल्क के लिए स्टेट के लिए तो काम कर रही है, तो जिन वोट देने वालों ने पार्टियों के मेंबर जिन्होंने वोट दिए हैं वो खुद कह बोले ना।
1: देखिए जी, जब ये हमें येलो कार्ड दे देता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के आईन के तहत, ये बड़ा जरूरी है समझना, जब ये हमें एक येलो कार्ड स्विचिंग फल्क नंबर दे देते हैं तो फिर हम इस स्टेट के तहफ्फुज में आ जाते हैं, फिर हमारा भी काम है कि हम स्टेट के कानून को की इज्जत करें, एहतराम करें और इसी तरीके से स्टेट हमें पूरी तहफ्फुज देती है, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को बताया नहीं जाता, हम लोगों को जो है ये चीजें नहीं बताई जाती। आप ये देखें कि अभी कल दो लड़कियां जो है वो सामने आई हैं और उनके नाम भी मुसलमानों वाले नहीं, और उन्होंने आगे कहा कि जी हमने तो इस्लाम को छोड़ दिया, उस कल्चर को छोड़ दिया और अब वो बातें कर रही है, तो ये चीजें जो है इसकी वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या हम लोग हैं? हाँ, हमें ये बात करनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो एक अलहदा चीज है, मुसलमान एक अलहदा कल्चर में रहते हैं और हर मुसलमान एरिया अपने एरिया के कल्चर में रहता है, और अगर उसमें कोई ड्रग्स यूजर है या कोई उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट है या कोई दूसरा है या कोई होमोसेक्सुअल है तो वो इस्लाम जो है उसके इनसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो इंसान है तो वो रह सकते हैं। तो हम जब हमें इस्लाम के बारे में कोई चीजों का पता नहीं, हमारे जो उलमा यहाँ आए हैं वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, वो गोरों को कोई बात नहीं समझाते, उनके पास कोई ऐसे वर्डिंग नहीं कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के आइन को समझकर बात करे। तो राजा साहब, ये जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं ये हमारी ही वजह से हुई हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमसे बड़ा राशिस्ट कोई नहीं, जो अपने आप हमने यहाँ पे एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए हम राजी नहीं होते। हमारा एक दोस्त भाई जो 70 से हमारा दोस्त है, जब उसके बारे में पता लगता है कि वो दुनिया से चला गया, वो छोड़ के चला गया या वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ मस्जिदों में इसलिए नहीं जाते कि यार वहां पे तो ये फलाना फिरके का फलाने फिरके का, ये राशिज्म हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए मुसलमान होना तो बात की बात, हम सबसे पहले इस्लाम हमारा दीन है और हम इस्लाम के पाबंद हैं, और अच्छे शहरी बनना और अच्छे तरीके से इस मुल्क के अंदर रहना और इस्लाम का नाम बुलंद करना, ये हमारा फर्ज है। हम ना लड़ाई झगड़े के लिए इस मुल्क में आए, ना फसाद पैदा करने के लिए आए, ना हम टेररिस्ट है, क्यों कि हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम हमारा दीन है, जो इस्लाम हमें सिखलाता है वो हम करेंगे। अगर हम आपके कानून से तंग हो जाएंगे तो हम उस पर बात आपसे कर सकते हैं, और अगर आप उस पर राजी नहीं होते तो हम यहाँ से हिजरत कर जाएंगे। ये दीन हमारा सिखलाता है, हमें अग्रेसिव नहीं होना, हमें कोई ऐसी बातें नहीं करनी। तो ये राजा साहब, ये चीजें जब तक हमारे लीडरान इन चीजों को समझ नहीं सकते और वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत करते हैं और पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, वो हर अपने आप को बड़े चौधरी और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शाह, बड़े बड़े शेख अपने आप को समझते हैं। तो जब तक ये कामें रहेंगी तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन इस मुल्क में आ रही है, ये कल को हिस्ट्री में बुरे नामों से हमारा नाम लिखेगी और ये कहेगी कि इन लोगों ने सियासत को यहाँ और यहाँ के कानून को बुरा और बदनाम किया। जी राज साहब।
0: शाह साहब, मफादात की सियासत क्या होती है? आप बिलोंग टू आर्मी फैमिली करते हैं, आपके वालदे मोहतरम पाक आर्मी में रहे, तो अभी जो बयानात आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा नाम है, मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं, दीनी लिहाज से बड़ा उनका नाम है, सियासी लिहाज से बड़ा नाम है, वो पार्लीमेंट में अब भी मौजूद हैं और कई दफ़ा मेंबर बन चुके हैं, कश्मीर कमेटी के रह चुके हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज हम आप सुनते जा रहे हैं लीडरान की या उलमा की जो स्टेट के खिलाफ, शाह साहब क्या आपके वालदे मोहतरम पैसे के लिए फौज में गए थे?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे खानदान में अगर वो गए थे तो वो कहते थे कि मैं अपने मुल्क की खातर जा रहा हूँ और मैंने अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, क्योंकि कायदे आजम का हुक्म था कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो जो यंगस्टर पढ़े लिखे हैं, मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, तो उन्होंने पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म कर लिया, तो ये हुक्म आया कि भाई आप लोग जिन्होंने कर लिया वो फौरन जो है आर्मी को या दूसरे सिविल अदारों को ज्वाइन करें। तो मेरे वालिद साहब ने और इनके बड़े भाई ने दोनों ने आर्मी ज्वाइन कर ली और दोनों सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए और उन्होंने आर्मी
0: तो
1: में
0: सारे जो आर्मी से शोधा हैं, आर्मी की जिन्होंने नौकरी की, मौलाना साहब ने एक बड़ा बयान दिया, सियासतदान हैं, जमहूरियत पसंद की दावे करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इमरान खान साहब मौलाना के सामने फरमाया करते थे, उनके बारे में फरमाया करते थे, अब तो वो दोनों एक पेज पे आ चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में जो कहा करते थे उसके अपने अल्फाज भी तब्दील किए। तो शाह साहब, जो शोदा के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, सब शोदा की जो उन्होंने जो है वो मैं समझूँ उन फैमिलीज की तोहीन उन्होंने की है, तो लोगों के दिल अफसरदा हैं, तो ऐसे बयानात शाह साहब दीनी लिहाज से कोई मसला पेश करें, कोई दीनी बात करें, और आपने उस स्टेट को, उस फौज को चैलेंज कर दिया, अगर आप फौज को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचा? शाह जी,
1: जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम रहते हैं, तो वहां पे ये होता है कि भाई आप धड़ाबंदियां कर लेते हैं और लोगों को इतनी ज्यादा नफरत। देखिए, जिन लोगों ने ये लोग जो है, आप MQM को देख रहे हैं, आप इन सारी पार्टियों को देख रहे हैं, ये सारी के सारी आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, ये फौज के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, एक ही भी अदारे के खिलाफ जब आप बात करते हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक जाति किसी जज के खिलाफ या किसी पुलिस वाले के आप बात करते हैं, तो वो उसकी जातियात पे आप कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जब आप अदारों को ब्लेम गेम करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप मुल्क के गद्दार हो गए हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, और इसकी हर मुल्क के, दुनिया भर के जितने भी मुल्क है, इवन डेनमार्क के, इसका एक ही है, डेनमार्क में सजाए मौत नहीं, लेकिन ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सारी उम्र जब तक आप जिंदा हैं, आपने कह दे तन्हाई ही काटनी है। तो हमारे मुल्कों में सजाए मौत है, सारी दुनिया में, अमेरिका में भी सजाए मौत है, तो ये चीजें जो है कि आप एहतियात करें कि ऐसे वायलेशन ना करें, ऐसी चीजें ना करें। अगर जाती तौर पर आपको कोई रंज है, अभी मैं एक बंदे का फेसबुक पे सुन रहा था, वो कह रहा था जी के जी अयूब खान के जमाने में 1962-1960 में क्या नाम है बलूचिस्तान का बुरा हाल था, पागल के पीछे, मैं खुद वहां पे उस वक्त था क्वेटा में, और मेरे वालिद साहब उस वक्त इन्फेंट्री कोर्स कर रहे थे, और मैं वहां पे अपनी वालदा के साथ था, मेरा छोटा भाई भी वहां पे पैदा हुआ और क्वेटा के अंदर, तो मैं ये तुम्हें बता दूं, क्वेटा वाज वन ऑफ द बेस्ट सिटी पाकिस्तान का उस वक्त, वहां पे इतना अमन था कि हम लोग बाहर पिकनिक के लिए चले जाते थे, बच्चे सड़कों पर खेलते थे, अमन व अमान था, इतने अच्छे लोग वहां रहते थे। ये तो आप लोगों ने अफगानियों को भाई भाई कह के अफगानियों को पाकिस्तान में बुलाया, पख्तून भाई एक एक करके नारा आपने लगाया, पाकिस्तान का सत्यानाश आपने किया, जब वो यहाँ पे आ गए फिर आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना वो आपके अफगानी भाई हैं, ना आपके पश्तून भाई हैं, आपने उनके साथ नफरत का, क्योंकि ये कौमें जो आई थी ये मेहनत का थी, इन्होंने جابز لے لی, انہوں نے آپ سے زیادہ اچھا تجارت کرنی شروع کر دی, اور اس کے خلاف اب لوگوں نے محاذ کھڑا کر لیا ہے. یہی سیاسی پارٹی ہے, ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور پھر جب پارلیمنٹ میں آ جاتی ہے اور پھر یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پیسہ لیتی ہے. اربوں کھربوں ڈالر جو ہے یہ سالانہ بلوچستان اور سرحد کے لیے لیتے ہیں اور سندھ کے لیے. کیا انہوں نے وہاں پہ کسی جگہ پہ ترقی کرائی ہے؟ نہیں. ان کے بچے باہر رہتے ہیں, یہ سارا پیسہ انہوں نے دبئی قطر اور ساری دنیا میں انہوں نے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے, دنیا بھر کو انہوں نے امیر کر دیا ہے. انگلینڈ جیسے ملک کو جو دوسری جنگ عظیم میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا انہوں نے آباد کر کے رکھ دیا, اور آج یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کچھ نہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ 40 پینسلوینیا امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ایک باقاعدہ ایک شائع کیا کہ دنیا کی پاور فل کنٹریز کون کون سی ہے, اکنامیکلی ہب اور دوسری اور طاقت کیسی ہے ان کے پاس, ان کی فوج کیسی ہے. اس کے اندر سارے ملک ہیں, ایران بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سارے ملک ہیں, لیکن 40 ملکوں کے اندر پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے جس کے لوگوں لوگ اگر سائیکل خریدتے ہیں یا کوئی ایسی گھر خریدتے ہیں تو وہ کیش خریدتے ہیں. یہاں پہ یورپ میں کتنے بندوں کا اپنا گھر ہوگا؟ ڈنمارک میں میں کہہ سکتا ہوں میں جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ میرا گھر ہے, لیکن ایکچولی وہ جو ہے وہ بینک سے پیسے لیے ہوئے ہیں, بینک کو وہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, وہ ساری عمر آپ کا نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے ہمارا ملک جو لوگ ہیں یہ خود ہمارے ساتھ غداری کرتے ہیں, یہ خود ہمیں اس ہمارے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ناکو چنے چبا دی اور وہاں پہ اس کو اتنی بڑی شکست دی ہے پچھلے سال. ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان, اور یہ کون ہے؟ غدار وطن ہے جو ملک کے خلاف, ملک کی فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو راجہ صاحب ان کے اوپر اگر بولنا چاہے تو ہم سارا دن بولتے رہتے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جس کے گلے میں سیمنٹ اور سریا میں نے لگا دیا ہے وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وطن ہے تو ہے, اسی وطن کا پاسپورٹ لے کے آئے ہیں تو اسی وطن کے ساتھ محبت کریں, اور اگر اس محبت سے اتنی آپ کو نفرت ہے تو پھر پاکستانی کھلانا چھوڑ دیں اور جائیں جہاں آپ نے جا کر رہنا. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب دیکھیں نا, بات کا آگی پاکستان کی بات آگی, بات ہم نے شروع کی تھی یہاں کھیل کے میدانوں کی بات کی تھی, صحت کی بات کی تھی, آپ نے بیماریوں کے متعلق بتایا. اب جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اس میں علماء بھی جاتے ہیں, دوسرے لوکل لوگ بھی جاتے ہیں, تنظیمات کے لوگ بھی جاتے ہیں. تو شاہ صاحب اگر کوئی اچھا ٹورنامنٹ ہوا ہے, اچھی لوگوں نے کوشش کی ہے, انعامات تقسیم ہوئے ہیں, تو شاہ صاحب اس کے بعد یہ 804 والی وردیاں پہنا کے میاں صاحب کو پی ٹی آئی کا شو کرنا, تو امبیسڈر صاحب بھی وہاں مہمان خصوصی سے, تو شاہ صاحب ہمیں سب کو اپنے اپنے گربانوں میں تو جھانکنا چاہیے.
1: دیکھیں جی اس وقت جو مرضی کوئی کہے, کوئی پی ٹی آئی کا بنے, کوئی کسی کا ہو, اس وقت سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ آپ اس تنظیم کو دیکھیں, آپ اس ملک کو دیکھیں جس ملک سے آپ کی وفاداری ہے. آپ اگر پاکستان کے خلاف, میں کبھی بھی, مجھے عرصہ دراز ہو چکا ہے میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست کے اوپر بات نہیں کرتا, لیکن آج میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ چھٹیوں کے ان دنوں میں اگر آپ ایکس پہ جاتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں, تو ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان سٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے. تو خدا را کچھ اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے. کل کو اگر یہ ہمیں ان ملکوں سے مجبور کر کے نکال دیتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو پاکستان جانا ہے, تو کم از کم جو آپ کی جدادیں ہیں وہاں پہ یا جو چیزیں ہیں, یا تو آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ بھی آپ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی جدراہٹ ختم ہو جائے گی, آپ زیرو ہو جائیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کرکٹ بھی کھیلیں, یہاں پہ اسکواش بھی کھیلیں, ہینڈ بال کھیلیں, ہر چیز کھیلیں, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو یہ شعور ضرور دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا غدار تو نہیں بیٹھا ہوا جو ملک کے مفاد میں غلط باتیں کر رہا ہے. उसका भी उसको उससे निकाले, उसको उठाएं वहां से। और दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अब हम आने वाले दिन का हमें पता नहीं, आज जिंदा है सुबह नहीं है, लेकिन जो हमारे उलादे हैं, हमारी जो थर्ड फोर्थ जनरेशन यहाँ तैयार हो चुकी है, खुदारा उसके लिए तो कुछ सोचें। अगर आप आम खाएंगे, जामुन खाएंगे, अखरोट खाएंगे, जो मर्जी खाएं, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा दे, लेकिन यहाँ जिन बच्चों को आप ये आदत डालेंगे, अगर खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, देखिए मुझे हैरानगी है कि राजा साहब आज और कल ह्यूमन राइट्स और दूसरी एजेंसियां जो हैं वो बोलनी शुरू कर दी हैं। पूरे 2 साल हो गए हैं कि इन्होंने ये कानून 2023 में बनाया था, लेकिन कोई यहाँ के हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने नहीं बनाया। तो लिहाजा अभी ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने मुआशरे को सही करें और इन लोगों को देखें कि ये क्या कर रहे हैं।
0: शाह साहब, मैं चंद सुर्खियां पढ़कर आपको सुनाता हूँ, इससे सोच का अंदाजा होगा कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और हमें सोच समझ क्यों नहीं आती। शाह साहब, मैं मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ता हूँ। ईरान पर अमरीकी हमले जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का ईरानी दावा। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से आम मुलाकात। बैरिस्टर गौर का आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात के बायकॉट पर नज़रसानी का अंदिया। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान के वज़राए खारजा अगले हफ्ते इकट्ठे होंगे। दिल का दौरा पड़ने से कबल अल्लाह रखा की बेटी को तलाक हो गई थी। रावला कोर्ट का लदम एक्शन कमेटी के मसल्ला जत्थों को रेंजर्स एहलकार शहीद। 100 मिलियन डॉलर्स के मोबाइल की स्मगलिंग, पाकिस्तानी निसाद मुलजम अमेरिका मुंतकिल। एहसन इकबाल ने नेटफ्लिक्स सार्फीन को खुशखबरी सुना दी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ओकाइमा कमेटियों का बायकाट ख़त्म करने का फैसला। यूरोपी परवाज़ों को खलीज के हदूद में परवाज ना करने की हिदायत। 400 किलो चांदी चोरी केस, साबिक क्रिकेटर कस्टम समेत मजीद 5 मुलजमान गिरफ्तार। शाह साहब, आप मुझे अंदाज़ा लगाएं, सुर्खियां को बिल्कुल शुरू से शुरू करें। आप अपनी सोच, इन लोगों की सोच का आप अंदाज़ा लगा रहे कि हमारी सोच को, हमारे जहनों को किस तरफ ले जाया जा रहा है, चूँकि हमारा टोटल इंसार अब जो है वो टेलीफोन पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जो है वो जा चुका है। चूँकि हमने ख़ुद तहकीक बिल्कुल करनी नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, जो कुछ हमें पेश किया जाता है, जो कुछ सोशल मीडिया हमारे सामने रखता है, चारे की तरह डालता है, उसको हम चुकना शुरू कर सकते हैं। तो शाह साहब, हम डेनमार्क में रहते हैं, आप हमेशा ज़ोर लगाते रहते हैं इस मुल्क की सियासी पार्टियों का हिस्सा बने, इस मुल्क की पार्टियों के मेंबर्स बने, इस मुल्क की पार्टियों में इलेक्शन ले, तो शाह साहब दिलचस्पियों का अंदाज़ा होता है ना। तो शाह साहब, फिर जो बातें आप कह रहे हैं कि ये कानून बन रहा है ह्यूमन राइट्स का, फलां चीज़ बात हो रही है, फलां कुछ हो रहा है, तो शाह साहब फिर किसका कसूर है?
1: देखें जी, ये हमारा अपना कसूर है। मैं इसलिए इन लोगों को कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के हालात को देखें। आप ये देखें कि कल की बड़ी सुर्खी थी अखबारों में, खारिया का जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर या कौन, उसको डेनमार्क का वीजा नहीं लगा, और इसी तरीके से गुजरात का भी है, उसको भी नहीं लगा, लेकिन जो हवालदार या थानेदार थे उनको वीजे मिल गए डेनमार्क के। तो ये चीजें देखने वाली हैरान चीजें हैं कि सबसे ज्यादा खुदकशी की मौत जो है वो गुजरात शहर में हो रही है, और उनकी खबर जो लगी है वो बहुत अफसोसनाक है। आप ये देखें कि इस वक्त जो पावरफुल लोग हैं उनको उनकी बख्शिश नहीं हो रही। वहां पे जो वो सीसीडी का जो महकमा बना है वो बगैर किसी अदालत में पेश, किसी जगह पेश हुए हुए हो, वो किसी भी बहाने में आपको सरेआम गोली मार देते हैं और जान से मार देते हैं, पुलिस मुकाबला शो करके, ना भी पुलिस मुकाबला वो आपको मार दे, उनको राइट है। तो आप कल को आप लोग जाते हैं पाकिस्तान में, मैं जाता हूँ, हमारी जो जदादें हैं वहां पे, हमारे जो घर हैं, कल को कोई बंदा क्या था जी, या तो बंदा मुझे बेच के चला गया हुआ है, करोड़ों की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, और अगर वो पुलिस को चंद लाख दे के तो ये पुलिस मुकाबला में हमें शो करके तो हमें हमारा वहाँ खात्मा कर देते हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें कोई तहफ़ है? किसी को कोई तहफ़ नहीं। पहले आप उधर देखे जी, ठीक है जी, आप फलाने गांव के, आप फलाने हैं जी, घर में कोई MNA MP है, आपकी मदद को आ जाएगा। अब तो आप देख लें कि जो वहाँ पे
0: नहीं शाह साहब आप देखें, क्योंकि आप शाह जी चूंकि उस खत्ते को, उस जगह को, उस शहर को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी फितरत को, सियासतदानों की फितरत को आप जानते हैं, उनकी पॉलिसी को आप जानते हैं। आप देखें ना, कल तक हम जो एक प्रोग्राम किया ताकि शेयर भी हम कर दें कि नासिर भट्ट साहब हैं, कोई हैं वो अपना कह रहे हैं नून लीग के, उनके बारे में कितनी बातें की जा रही थी। जो कल परसों हमने प्रोग्राम देखा, एक प्रोग्राम हुआ वहाँ जो कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में हुआ और उनके डेरे का इफ्तिताह भी हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लीडरान आए हुए थे, वहाँ तो नासिर भट्ट साहब को एक हीरो बना के पेश किया गया। तो शाह साहब देखे ना हालात किस तरह तब्दील होते हैं, किस तरह बातें होती हैं, तो बात फिर शाह साहब घुमा के हम लाते हैं कि हम लोग यहाँ की सियासत क्यों नहीं करते।
1: जी बिल्कुल, नासिर भट्ट यहाँ पे एज ए वो आए हुए थे इंग्लैंड में, वो काफी सारी दुनिया उनको जानती है, वो इंग्लैंड में उन्होंने पनाह ली, सियासी पनाह ली हुई थी, आज वही पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल सही हो चुका है और सेनेटर हैं वो पाकिस्तान के।
0: ऐसी मैं दूसरे बात करूं, वो गुजरात वाले उनकी बात कर रहा हूं।
1: अच्छा, देखिए गुजरात में तो आप जिसके पास टोयोटा लैंड क्रूजर बिशा किराए पे हो, दो कपड़े जोड़े हो, वो माया लगी हुई हो, आप दो दिन सर्कल रोड पे चक्कर लगा लें, तीसरे दिन आपको या मशीन बन जाएंगे या आप कोई बड़े सरमायादार के नाम पे आपको मशहूर कर दिया जाएगा, अखबारी नुमाइंदे आ जाते हैं उनके साथ खाना खा लें और उनको खाना खिला दें, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आप उनको खाना खिला देते हैं तो वो एक हफ्ता अखबारों में आपको सुर्खियां लगाएंगे और आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बाहर के मुल्कों में शो कर देंगे। बेशक हम लोग यहाँ पे बोरियां ही उठाता हूँ, मैं खुद हूँ ड्राइविंग करता हूँ, तो ये हमारी सुर्खियां लग जाती हैं। तो ये चीजें जो है राजा साहब ये मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप बाइज्जत हो, आप बेशक दाल खा रहे हो उसके साथ भी साथ चटनी हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, ये सबसे बड़ी नेमत है। देखे मुझे एक बंदे ने पूछा, उसने कहा शाहजी फलाना बन गया। मैंने कहा बात सुनो, मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी। उसने कहा जी क्या नजर ही नहीं आ रहा आपके पास, क्या आप तो टैक्सी चला रहे हैं। मैंने कहा जो मेरे माँ बाप ने मुझे कलमा सिखाया ना, ये कलमा, ये जो अजान मेरे कानों में दी और जो जो कलमा मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया, इससे मैं दुनिया का खरबापति बंदा बन गया हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं परवाह कोई मर्सिडीज में फिर रहा है, कोई टोयोटा लैंड क्रूजर में फिर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई चिंचली में बैठा। मैं जहां भी बैठूंगा मैं अपने आप को वैसे ही तसव्वुर करूंगा जिससे का माहौल होगा। तो अगर हम लोग ये चीजें कंफर्म कर लें अपनी जात में कि हमने जब मिट्टी में जाना है, जब हमने इस 6 फुट की कब्र में हमने नीचे जमीन के अंदर जाना है, तो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा, किस तरीके से हम दो दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अपने जिस्म को, रूह तो देखती है ना जिस्म।

0: पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी होते हैं, तो हम खुद रिकॉर्डिंग करवा कर कहते हैं कि हम इस असम्बली पर इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, उसके बावजूद वहाँ के बेनिफिट भी सारे लेते हैं, सारा काम करते हैं। यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि हम वोट के ख़िलाफ़ हैं लेकिन जितने बेनिफिट हैं वो सारे हम लेते हैं। शाह साहब, डबल मोरल तो हम खुद लोग हैं, डबल मोरल लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। शाह साहब
1: बिल्कुल, ये चीज़ें हैं कि इन इन लोगों का देखिए, मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो खानदानी लोग होते थे वो अगर सियासत करते थे तो वो सियासत के अंदर अपना भरम भी रखते थे, अपने डेरों को भी चलाते थे, हर एक चीज करते थे। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बदमाशी करते हैं, जिनका बुरा तौबा सफार करने, जिनको मैं आपको ये बताऊं कि ये पिछले हफ्ते की खबर है कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं और औरतें जो हैं और फांसी इतनी फैल चुकी है लाहौर के अंदर, ये उनकी सबसे बड़ी खबर थी। तो ये देखें, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, इसमें हमारा खुद हाथ होता है कि क्यों कि अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो खुदकशी करने की बजाय वो अपना जिस्मानी धंधा करना शुरू कर देती है, बुराई करना शुरू कर देती है, तो इसके ऊपर हम जो लोग हैं, इस माशरे के जो लोग हैं, हमें अपने दिमाग को खोलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास फेरिये जाने के लिए, हमारे पास फलानी तरह उमरा करने के लिए, हज करने के लिए हम 20-25-30 लाख खर्च कर सकते हैं, तो हम ऐसी फैमिलियों को जिनके पास खाने को रोटी नहीं, अगर हम वो लगा दें, तो आज के जमाने में मैं आपको कह दूं, आप बता देता हूं कि आज के जमाने में भी अल्लाह ताला आपका घर बैठे हुए हज कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये इस्लाम की सबसे बड़ी तलीमात में से एक तलीमात है कि आप दूसरों की मदद करें। लेकिन हम नहीं, राजा साहब मन में घूम फिर कर इसी गर्मी में इसी तरह रहना। देखिए आज की जो यहाँ पे 27-28 गर्मी है वो हम बर्दाश्त नहीं कर
0: तो
1: सकते।
0: शाह साहब एक सवाल है, शाह साहब हमारी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारा काम कपड़ों से शुरू होता है, गाड़ियों से शुरू होता है, खाने पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फोटुओं पे जाकर फिर उसके बाद एंड उसका हो जाता है। तो शाह साहब क्या हमारी मंजिल यही है?
1: राजा साहब आपने पुराने वक्तों में कभी गांव में कभी गए थे या गांव के लोगों को देखा था जो तंदूर की रोटी पे अचार रख कर या वो अपना थोड़ी सी चटनी रख के, तो शुक्र
0: हजारों लोग खाते थे।
1: तो उनको कभी आपने ये सुना था कहते हुए कि जी मेरा दिल करता मैं मुर्गी खा लूं, मेरा दिल करता मैं गोश्त खा लूं। आज हम
0: आज की वो सबसे मॉडर्न गुजा है
1: जी, और हम लोग हराम खा खा कर, इवन आप ये देखें कि जिन रेस्टोरेंटों में कुत्ते और गधे का गोश्त और हराम बिक रहा है वहां पे भी हम जाके खाते हैं। फिर हराम का पैसा हमारे लोगों में रिश्वत लेना, रिश्तेदारी करनी,
0: सब छोटा बड़ा गोश्त मिक्स करके बेचना
1: जी, तो ये जो चीजें हैं इसको इसको फैलाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ से जाके वहां शोर ना मारे, अपने पैसों को अपनी जेब में रखें और अपने घर वालों को बड़ी बड़ी कोठियां ना बना कर दें, ठीक है जिस मकान में वो रह रहे हैं उसके अंदर उनको सहूलत दो, और उसके बाद उनको कोई ऐसी दुकान ऐसा कारोबार करके दे जिससे उनको चार पैसे मिले, वो कोई चार लोगों को नौकर रखे या कोई चीज चले
0: नौकर करे। शाह साहब आखिर में प्रोग्राम को क्लोज भी करें, शाह साहब कोई हाल भी साथ बताएं। बातें तो हमने बहुत ज्यादा कर ली है, कोई आपको लीडर नजर आ रहे हैं, कोई काम करेंगे या इसी तरह बातें होती ही रहेंगी?
1: जी अगर ये लीडर सिर्फ आम भी खाएंगे और आमों की पेटियां लेके जाएंगे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, हाँ मुझे दो बंदे जो हैं वो मुझे काम करते हुए इस गर्मियों में भी नजर आ रहे हैं, और ख्वाब लोग खुश हो ना हो मैं उनका नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा। एक आप रेडियो चला रहे हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ के हालात बता रहे हैं, और दूसरा जो है कोई बैठ के अगर वो बात कर रहा है और लिख रहा है तो वो सिकंदर मलिक आज भी लिख रहा है, बोल रहा है, वहाँ उसके अंदर अग्रेसिव वो काफी है, गुस्से वाला काफी है, और एक सियासतदान को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चीज आती है वो बोल जाता है और इसकी परवाह नहीं करता। तो ये आप दो ही चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो इस वक्त यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में भी आप लोग एक्टिव हैं, तो बाकी तो सारे जो हैं वो ठंडे होकर सो गए हैं, सत्तू पी

0: जजमेंट ना हो, समरी ट्रायल ना हो, लोग गुत्थम गुत्था ना हो, लोग कानून को हाथ में ना लें और अदालत ही जो है ऐसा फैसला करे जिसके ऊपर सजा या जजा हो।
1: मलिक साहब, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक दो सवाल आपसे करने हैं। कश्मीर के इलेक्शन, एहतजाजी सियासत और अपोजिशन का ये जो तड़का बीच में लगता है, आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, तीन चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि भारत जंग हारने के बाद हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे आपकी रियासत कमजोर हो और आपका बयानिया जो है टूटे। तो उसमें चाहे कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, कराची हो, और टीटीपी हो, हमारे जो केपीके के जो बॉर्डर है उसके ऊपर स्किरमिशेज हो, या इंक्रीजिंग इंसर्जेंसी और तालिबानाइजेशन हो। अब दूसरा जो है वो ये छोड़ेगा नहीं, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे आप केपीपी में कराएं, चाहे आप बलूचिस्तान में कराएं, इस एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फॉरेन जो ताकतें हैं वो वहां अपना रोल प्ले करेंगी। अब देखना आपने ये है कि बरतानिया में 12-13 लाख कश्मीरी बसते हैं, उनके पाकिस्तान के साथ गहरे रवाबत हैं। यहाँ कश्मीरी निजाद काउंसलर्स, मेयर, मेंबराने पार्लियमान है, वो एक गैल्वनाइज करते हैं, उनके पीछे पूरी पूरी एक फौज है जिन जो वोट देती है उनको, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूरियां हैं। तो देखना ये चाहिए कि बरतानिया में बैठ के कश्मीर के इलेक्शन मैनेज ना किए जाए। आपने वोट डालनी है, बिस्मिल्लाह, कश्मीर में उतरें, कश्मीर जाएं, वोट डालें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, बसें दें, आप ट्रक दें, आप लोगों के स्टॉल लगाएं, आप अपने स्टेशन बनाएं और मदद करें। लेकिन खुदारा, यहां बैठ के, बरतानिया में बैठ के कश्मीर के इलेक्शन का फैसला ना करें। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी वोट डालेंगे, कोई और वोट नहीं डाल सकता, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान। आपने वोट डालने, बिस्मिल्लाह वोट डालें, अपने हुक्मरान खुद सेलेक्ट करें, जो हुक्मरान बने वो फैसला भी करें कश्मीर एक्शन कमेटी का क्या करना है। अगर कश्मीर एक्शन कमेटी वाले लोग बना लेते हैं हुकूमत, वो फैसला करें कि क्या मराहत देनी क्या नहीं देनी, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मकालमेल में रहे, सियासी चीज को सियासी रहने दें। यहां इसको खिदो बना लिया है, एक तो पोलराइजेशन, आप दरवाजे तोड़ रहे हैं, एहतजाज करें, ये बरतानिया है, ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे एहतजाज को देखा जाता है, यहाँ गाजा पे एहतजाज होता है, यहाँ पे इमिग्रेंट के खिलाफ ईडीएल एहतजाज करती है, लेकिन ईडीएल को हुकूमत नहीं मिल जाती, ईडीएल के एहतजाज में लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दे दी जाती कि वो उठा के इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दे। आप एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, पॉपुलिस्ट मूवमेंट ट्रांसलेट हो हुकूमत में ये लाजमी नहीं है। यहां आबादी ज्यादा है तो बातचीत भी ज्यादा होगी, आवाज भी ज्यादा निकलेगी, बिल्कुल निकालें, लेकिन यहां बैठ के कश्मीर के वजीर आजम का फैसला ना करें, वो वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को करने दें, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, इस जगह के लोगों को करने दें वहां की सीटों का फैसला। किसी ने बहुत ज्यादा सियासत है शौक तो जरूर जाके सपोर्ट करें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, अपनी पार्टी के नहीं लड़ने दिया जाता तो आजाद खड़े हो जाएं, आजाद लड़े, लेकिन वहां के लोगों को फैसला करने दें, उनके वोटों से एमएलए बनने हैं, उनके एमएलए के वोटों से आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है। अब एक जगह पे आबादी ज्यादा है और वहां पे आपकी से ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तरीका नहीं है कि आप गालम गलोच में हर उस सतह को पार कर जाएं जिससे आपका अकाउंट तो शायद मोनेटाइज हो जाए, पैसे ज्यादा आ जाएं, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लगा। अपने मेंबराने पार्लियामेंट, अपने काउंसलर, अपने मेयर को एक अच्छा, शुस्ता, फेयर, फ्री इलेक्शन करवाने या होने देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, रादर देन कि एंटी पाकिस्तान जाके जी दरवाजे तोड़ दे हाई कमीशन के, या जी बंदे खड़े करके तो जी झंडे लहरा रहे हैं जी इंडिया के, या गालियां निकाल रहे हैं, वो कोई तरीका नहीं है। आपकी एम्बेसियां हैं, आपने ही वहां से कार्ड लेना है, नायको कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, आपने इनसे सहूलतें लेनी है कि आप अपनी एयरलाइन डायरेक्ट वहां चला सके, मुजफ्फराबाद और बीरपुर, आपने ही इनसे काम लेना है तो काम चलना है। तो एक ऐसा ट्रीट करे कि जिस तरह एक मुहजब मुआशरा ट्रीट करता है, इसको इतना इज्जत बिस्ती का मसला

0: कश्मीर के लिए हमारी सपा ने, हमारे लोगों ने जाने दी, कश्मीर के लिए उनके दिल धड़कते हैं। कभी भी कश्मीर का नाम आए तो ये नहीं को कह सकता कि कश्मीर की किसी पाकिस्तानी ने मुखालफत की है। आपको भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत अलहदा चीज है, हुकूमत अलहदा चीज है, कश्मीर के इलेक्शन अलहदा चीज है, और उसको एक इलेक्शन के तौर पर लेना चाहिए। यही लोग जिनको आप गालियां निकाल रहे हैं, कल को एमएलए होंगे, वजीर आजम होंगे, आपने इन्हीं के साथ फिर मुकालमा करना है, इन्हीं के साथ बातचीत करनी है। बातचीत को एक हद से ना गुजरने जाए। जिस दिन आपके हाथ में डंडा आ जाए और आगे पुलिस वाला हो, आपकी बातचीत खत्म होगी, आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत खत्म होगी। आपने जिस दिन डंडा पुलिस वाले के सर पे मार दिया, खत्म होगी बात, आपकी सियासत गई बाढ़ में। आप जो मर्जी करते रहे, कोई आपको रास्ता नहीं देगा। मैंने आपको मिसाल दी है, बरतानिया में मजारे होते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश डिफेंस लीग या हम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, हम चाहते हैं इमिग्रेंट्स को उठा के वापस भेज दिया जाए, उसमें कश्मीर भी शामिल है। तो क्या किसी ने हमें निकाल दिया यहां से? इसलिए नहीं निकाला कि वो एक पॉपुलिस्ट, एक आवाज जरूर है, हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है। रियासतें बरतानिया नहीं ये चाहती कि यहां से सब कालों को निकाल दिया जाए या सब इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए। तो ये आप देखें और खुद अपनी चीजों को मद्देनजर रखें ताकि नुक्से अमन का बायस ना बने, यहां भी जगह सही ना हो जहां हम रहते हैं। और बिल्कुल मेंबराने पार्लियामान बेचारे फंसे हुए हैं, उनके 4-4 लाख, 1.5-1.5 लाख वोटर हैं जो कश्मीरी नजाद हैं, और उनको, उनकी भी बात सुननी पड़ती है। हमें सफारत खानों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फॉरेन ऑफिस को उन मेंबराने पार्लियामेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं छोड़नी चाहिए जो कश्मीरी कॉज या कश्मीरी प्लाइट के ऊपर एक बयानियां बनाते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए, हमें उनके साथ राह और रसम नहीं अलहदा करने चाहिए और उनको नेम एंड शेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी मजबूरी और उनके मसले को समझना चाहिए और उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए, और बल्कि बातचीत को, डायलॉग को बेहतर तौर पे करना चाहिए। और ये वफूद के तबादले और आना जाना, अगर कोई मिनिस्टर आता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर आता है, उनके साथ कश्मीरी नजाद मेंबराने पार्लियामान की भी बाहम मुलाकात रखवानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। ये इलेक्शन के बाद मामला और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज इलेक्शन तक है। जैसे ही इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत फाल होगी, तो ये मामला हल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे।
1: मलिक साहब, बड़ी ज्यादती होगी एज एवरसीज में, एक दो सवाल ना करूं और अपनी कम्युनिटी के बारे में बात ना करूं। आप ह्यूमन राइट्स को भी देखते हैं, लायर हैं आप, और पब्लिक की आवाज़ भी हैं आप। तो मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीरे दफा हैं, बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, हुकूमत के साथ उनके बहुत ज़्यादा तल्लुकात रहते हैं, अपोजिशन के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी जो हैं वो बहुत अच्छे तल्लुकात रखते हैं। तो गर्मियों में वो पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग लगाने का उनके पास बहुत अच्छा टाइम होता है, ज़रा सेहत बरकरार रखनी चाहिए। तो यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, तो हमें पीआईए कब मिलेगी?
0: पीआईए ख्वाजा आसिफ साहब ने तो नहीं देनी, पीआईए तो आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने देनी है, और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जुलाई से बरतानिया से मानचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, लंदन से भी शुरू हो गई है। और पीआईए अब एक प्राइवेटाइज अदारा है, कोशिश पूरी करेंगे कि अगर एक लुक्रेटिव आपका रूट है, डेनमार्क, फ्रांस, यहाँ से जहाँ जहाँ रोम, यहाँ से आती हैं फ्लाइटें, तो ये दोबारा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ भी शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जरूर शुरू हो। और ख्वाजा साहब के बयान को कई दफा सियासी बयान को सियासी बयान के तौर पर लेना चाहिए और थोड़ा सा चिन अप कर रखनी चाहिए। ख्वाजा साहब का कई दफा बयान जो लाजमी नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की का बयान हो, वो कश्मीर कश्मीरियों का है और हम कश्मीरियों के हैं, कश्मीर हमारी शाहरुख है। और ये बयानियां अभी ना तब्दील हो रहा है ना होने जा रहा है, जब तक इसका पायदार हल नहीं निकलता, हम कश्मीरियों की प्लाइट के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। आपस में भाई हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीरियों के खून से रूगर्दानी करेंगे। पूरा जोर लगाएंगे कि कश्मीरी कॉज को इस तरह के आपसी इख्तलाफात से नुकसान ना पहुंचे।
1: मलिक साहब, हुकूमत से मजीद हम क्या उम्मीद रखें? इसी तरह एक खबर चल रही थी कि कोई दो बंदे हैं, वो इंसानी जो है वो बंदों को भी खाते हैं, वो जेल में गए हैं, या खबर है सच है या झूठ है, ये पढ़ी गई है अखबार में, तो वो इंसानी इंसानी गोश्त खाते हैं, वो

0: में भी लोग उनसे डरते हैं, वो कहते हैं हम जेल में भी इनका गोश्त खा जाएंगे। तो मलिक साहब इस तरह की चीजें
1: फिक्र ना करें, इस तरह की बातें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप बेफिक्र रहें। और अगर खाते भी हैं तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होंगे, आप बेफिक्र रहें। इनमेट्स जो हैं, वो कैदी जो हैं, उनकी फलाह बहबूद या उनकी फिजिकल वेलफेयर, उनकी लुक आफ्टर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उनकी देखभाल करना, उनकी मेडिकल नीड्स और खाने पीने में एहतियात, ये सारा जेल मैनुअल में शुमार होता है। तो आप बेफिक्र रहें, कोई भी कैदी, किसी भी कैदी से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो राय साहब इजाजत अब
0: मलिक साहब
1: दें,
0: आपका
1: घंटा हो
0: बहुत
1: गया।
0: शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आखिर में अपनी टीम की तरफ से भी और अपने दोस्तों की तरफ से भी कि आपने बड़ा खुला हमें टाइम दिया और कोई सवाल ऐसा नहीं है जो हमने ना किया, जो हमसे लोग हैं जी आपने मलिक साहब से ये पूछा नहीं है। तो हमने भी जहनी तौर पर पूरी तैयारी की हुई थी कि आपको चूंकि लाइफ आप बैठे हुए हैं तो आपको जवाब तो अदालत में हमें देना ही देना होगा। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, डेनमार्क के लोगों को क्या कहेंगे?
1: थैंक यू राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने डेनमार्क जो मैं मुझे बहुत अजीज है, और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डेनमार्क आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा भी, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों की गुजारिशात, सिफारशात और मुतालबात में जो सहूलियात पैदा कर सकें और ज़रूर करें। और आप भी कोशिश करें, लोगों को बताएं, खुली कचहरी में उनको दावत दें कि वो शरीक हों। अगली खुली कचहरी 29 जुलाई को 2 बजे होगी, तो जरूर लोग तशरीफ लाएं जिनके कोई मसला है पाकिस्तान में। और साथ साथ अगर कोई आपको गुजारिश देते भी हैं तो हमारे बहुत अच्छे, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त यहाँ सफारतकार हैं, और आप उनको जरूर रब्ता करें, वो आपकी गुजारिश पहुँचाते हैं हम तक। बल्कि मुझे मिलने भी आए थे वहाँ लाहौर ऑफिस में। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलके कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आरा को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानियों को खिदमत फराहम करते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: जिंदाबाद।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
0: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समाइन, गर्मी है, धूप निकली हुई है और उसके बावजूद थोड़ी थोड़ी आवाज़ चलती रहती है। हर जगह, हर इलाके का अपना अपना मौसम होता है, तब्दील और होता रहता है। अगर आप 10 किलोमीटर आगे पीछे जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज भी आ जाता है, लेकिन ऑन द होल टेम्परेचर जो है वो बराबर ही होता है। पूरे यूरोप का, पूरे स्कैंडिनेविया का मौसम जो है इस वक्त गर्म है। तो सियासी लोग जो हैं वो छुट्टियों पे हैं, कमून में भी जो छुट्टियां हैं, तो लेकिन अपना जो सियासतदान काम करते रहते हैं। जिस तरह हमने पहले पिछले हफ्ते आपको बताया था कि, और सोशल मीडिया पे भी बताया था कि इस हफ्ते के हमारे मेहमान, जो सुबह इंट्रो में भी हमने बताया, सोशल डेमोक्रेट के वकार जो हैं वो सिटी काउंसलर हैं और ये दूसरी तीसरी बार जो है इस जॉब में, इस पोस्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं। अपनी जमात में काफ़ी असर रसूख रखते हैं, पावरफुल है। जो वहाँ के मेयर हैं उनके साथ भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो काम भी करते हैं, सुप्लियंट भी हैं और बहुत सारी अच्छी कमेटियों में भी बैठे हुए हैं और अपने हिस्से का, जो उनके हिस्से का काम है वो करते हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे से मुराद है अच्छी उनकी जॉब भी है और क्वालिफिकेशन भी उनकी बहुत अच्छी है। ये पूरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी है, इनके वालदैन भी पढ़े लिखे हैं। तो समाइन, ये जो पढ़ी लिखी चीज़ें होती हैं ये इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं, कमून में जो पोस्टें होती हैं इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं, काम भी करने पड़ते हैं। तो लोगों के मसाइल हम सुनते रहते हैं तो इकट्ठे करते रहते हैं कि जब भी कोई ज़िम्मेदार पढ़ा लिखा काउंसलर हमारे बराबर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि ये मसाइल हैं, लोग किस तरह सोचते हैं, लोग किस तरह बात करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है फिर इसको सब लोग सुनते हैं तो वो उनको जवाब देने में भी जो आसानी होती है। तो वकार, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
3: थैंक यू राजा साहब, थैंक यू।
0: वकार, हमें हमने छोटी सी तमीद बांध दी है, इसमें भी सारे मसाइल, सारे सवालात भी सामने रखे गए हैं, तो मैं सिर्फ एक दफ़ा आपसे कहूँगा अपना तारफ करा दें, आप किस जगह पर बैठे हुए हैं और किस किस कमेटी में हैं आप?
3: जी, मेरा नाम वकार अहमद है और मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ में। ये मेरा सेकंड पीरियड चल रहा है और अच्छे रिजल्ट से अंदर आया था, इसीलिए मुझे चेयरमैन की पोस्ट मिली है। मेजॉरिटी में बैठा हूँ, लास्ट टाइम भी मेजॉरिटी में बैठा था। सो ये मेरा फंक्शन है। इस दफा हम काम कर रहे हैं, कई कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं स्टेट के लेवल से, उन पे फोकस है इस दफा। तो उसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते रहते हैं वो भी फोकस में रहते हैं, और उसके अलावा बजट भी बैलेंस करना होता है हर साल कानून का।
0: सारा बजट के बगैर तो सारा काम नहीं चलता। तो अभी गालबन बजट तो पास नहीं हुआ, तजावीज़ सॉरी लोग डिबेट कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तजावीज़ पार्टियों वाले मीटिंग कर रहे हैं, अभी चीज़ सामने तो नहीं आई।
3: नहीं, वो सामने नहीं आई, मगर हमारा काम 2027 का बजट बैलेंस करने का कह लें कि मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। तो वो बजट का काम होता है समय फे के पहले तक थोड़ी मीटिंग्स होती हैं, अंदाजा लगाना होता है कि हर पार्टी क्या चाहती है से। उसके बाद फिर जब अगस्त सितंबर की मीटिंग्स होती है वो ज्यादा कंक्रीट होता है, उसमें डिस्कस होती हैं स्पेसिफिक छिलछे जो होती है ना, कि फॉर एग्जांपल हो गया कि एल्ट्रामको को की सर्विस में एक दो चीजें बनानी है उसके लिए पैसे चाहिए, या स्कूल की मरम्मतें करानी है उसके लिए पैसे चाहिए। पर ये चीजें इस बेस पे फिर इस इन डिटेलों के बारे में बातचीत होती है, निगोशिएशन होती है।
0: वकार, आगे हमारी बात चल रही थी कि सफाई सुथराई के हवाले से, कि पहले कुछ ज़माना पहले जो बड़ी कम्यूनें बड़ी साफ़ सुथरी होती थी, उनकी पार्किंग प्लेस बड़ी साफ़ सुथरी होती थी। अब आप जितनी भी पार्किंग प्लेस देख लें, प्राइवेट तो लोग खुद साफ कर लेते हैं, लेकिन जो कम्यून की जगह होती हैं, जो साल के लोग गाड़ी कर खड़ी करने के पैसे देते हैं, पास के पैसे देते हैं या पार्किंग पे करके पैसे देते हैं, तो वो जगहों पे हमेशा ये जो दीवार लोग खिड़कियां लगा रहे होते हैं, स्टेनलिसा लगी होती हैं, उसके स्क्रू वगैरह या दूसरी चीज़ें लगी होती हैं, उसी तरह नीचे पड़ी होती हैं, वो सफाई करके नहीं जाते, गाड़ियों का नुकसान होता है, गाड़ियों के ऊपर चीज़ें गिर जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, टायर पंक्चर हो जाते हैं। तो ये निज़ाम ये कम्यून के अंदर आता है या कि ये पार्लियामेंट के अंदर आता है?
3: ये एक मिक्स है, कोई चीजें होती हैं जो कमून थॉपल कर सकती है, और कोई चीजें होती हैं जहां हम ना, फॉर एग्जांपल एक हमारा एक मसला है इस दफा, एक कंपनी है जिसका नाम है होसीएस, वो जो होते हैं ना आउफेल सोनचेंग वो हैंडल करती है, और जब उनके ट्रक आगे पीछे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मिट्टी छोड़ती है सड़कों पे, और सड़के पर जब मिट्टी होती है तो गाड़ी जब चलती है तो उनपे भी लगती है, पोल्यूशन फील होता है हमारे जो लोग साइकिल चलाते हैं या लोग चलते फिरते हैं। हम पिछले 2 सालों से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हमने सख्ती इन पे की हुई है, उस पे हम ऑडिट भी करते हैं, मगर अगर बंदा ये कहे कि इस कंपनी को हम कमून से निकाल दे, वो नहीं हम कर सकते, हम उनको फेंक नहीं सकते बाहर कानून से, मगर हम उन पे ये डिमांड रख सकते हैं कि आप जो गन खिलाते हो उसको साफ भी किया करो, और उस प्रोसेस में हम ज्यादा चीजें भी ऊपर रख सकते हैं कि आपने ये भी करना है वो भी करना है। फॉर एग्जाम्पल वो होता है ना कि हर शाम को एक चक्कर लगाना होता है उस इलाके में, और जो ट्रक होता है सफाई करने वाला वो चलाना होता है। ये मसला अभी भी काफी गर्म है, और पिछले 1.5 साल से इलेक्शन से पहले भी गर्म था, मगर हम लास्ट टाइम जब हम एक दिन जब हमने छुट्टियों से एक दिन पहले मेयर और मैं मीटिंग की थी हमने हुसैन से, और वहां भी हमने थोड़ी ना सख्त टोन से उनसे बात की थी कि ये कानून ही फॉलो कर रहे हैं और इस पे हम अवेयरनेस डाल रहे हैं। हम उनको फेंक नहीं सकते बाहर कानून से, मगर हम उनपे ना प्रेशर डाल सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और जो कई ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी कोशिश कर रही है कि हमें क्रिटिसाइज कर रही है कि हम इनफ नहीं कर रहे, मगर उनको ये नहीं पता कि शोर मचाना बहुत सौखा है, कानून के दायरे में रह के काम करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसके अलावा आपने पार्किंग की बात की है, पार्किंग का ये मसला है कि हमारे कमून में पहले दिन से, जब मैं 2019-20 में या जब मेरा पहला पीरियड शुरू हुआ था तो ये बातें चल रही थी कि पीछे रिंग्स पार्किंग ग्लोस्टो में भी लानी है कि नहीं, और मैं बहुत सख्त इस चीज के खिलाफ था, तो आज दिन तक खिलाफ हूँ कि ग्लोस्टो में पीछे रिंग्स पार्किंग नहीं होनी चाहिए। एक दो प्राइवेट पार्किंग बनाए गए हैं मगर वो प्राइवेट हैं, मगर मगर जो ऑफली पार्किंग है ग्लोस्टो में वो पिछेरिंग पार्किंग नहीं होगी, और इस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस है कि ऐसी रहे। इसके अलावा आपने सफाई की बात की है, जनरली मेरे कमून में तो वैसे भी आई डोंट फील के गंदगी कभी थी। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, हम नए फ्लैट्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में, उसका जो होता है वो है, मगर उस पे कभी कंप्लेन नहीं हुई आई। सो ये कभी मुद्दा नहीं बना यहाँ।
0: वकार, बहुत सारी गाड़ियां, आप ज्यादातर गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होने जा रही हैं, कोपनहेगन कम्यून में तो दाखिला ही बंद हो जाएगा पेट्रोल गाड़ियों का। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले एक जमाने में जब नई गाड़ियों के लिए बात की गई थी तो पुरानी गाड़ियों के उन्होंने पैसे दिए थे, तो अब ऐसा कानून होना चाहिए, किसी फर्म से किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नई गाड़ियां जो है वो सस्ती करें, पुरानी गाड़ियां अच्छी कीमत पर वो वापस ले लें ताकि लोग गाड़ियां खरीद सकें। तो क्या ये तजवीज़ आप अपनी कानून में दे सकते हैं?
3: नहीं, ये तो अगर मैं आपका सवाल ठीक समझाऊं तो ये तो स्टेट लेवल का काम है ना कि कस्टम औकीफ गाड़ियों का कम कर दे। और ये गल्प रखेंगे, मेरा ख्याल है कि ये गाड़ियों पे कस्टम लगाना शुरू किया था और ये गाड़ियां थोड़ी थोड़ी महंगी हो गई थी, मगर ये लोकल पॉलिटिक्स में इन चीजों पे हम कुछ नहीं कर सकते।
0: नहीं, मैं तजावीज की बात करूं, जब पार्टी के बड़े लोग, आप जहरा आपकी मरकज में भी आपकी हकूमत, आपकी जमात की हकूमत है, जहरा दूसरी जमातों के साथ मिलकर आपका ये रेड ब्लॉक हकूमत में है, तो ये छोटी छोटी तजावीज जो है वो जहाँ मौका मिलता है तो इंसान दे सकता है।
3: नहीं, ये चीज मेंशन जरूर हुई है जब कॉइन फुलसी की बात होती है कि लोगों का जो है ना वैन है कैसे, मतलब लोग कहते हैं कि अगर हमने बिजली की गाड़ी लेनी है तो 1.5-2 लाख तो इस्तेमाल करना ही पड़ना है, अगर हमें डीजल पेट्रोल की लेनी है तो 25-50 हजार की मिल जाती है। तो इन चीजों पर भी तो है ना, एक इकोनॉमी भी फॉलो करती है इस चीज पर। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो बिजली की होती हैं वो अभी नहीं उस कीमत पे आई कि आप जाके ले लें, अगर आ भी गई है तो उनके किलोमीटर इतने ज्यादा होते हैं कि एक रिस्क रहता है कि बैटरी जवाब ना दे जाए।
0: तो इससे साबित हुआ कि यहाँ सरमायादाराना निजाम, कंजर्वेटिव निजाम चलता है।
3: जैसे आप समझे, मैं मेरी भी यही राय है कि देखिए एक पार्टी की हर पॉलिसी के बंदा नहीं होता एग्री, कोई चीजें होती है जो बंदा कहता है कि सेंसिटिव चीज है उसमें ज्यादातर लोग एग्री करते हैं पार्टी के, और कोई चीजें होती है जहां आप कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि एक जब आप बिजली की गाड़ियों में आप को महंगा कर देते हो, फिर मार्केट जो कहता है वो यही है कि अगर आपने आपके पास पैसे नहीं है इतनी महंगी बिजली की गाड़ी लेने के, या मैं फिर जाके आप पेट्रोल की ले लें, वो बंदा ले सकता है 50-30 हजार की। सो ये उनको भी पता है, मगर वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है, मगर ये डिस्कशन चल रही है। बंदा कह सकता है कि
0: चलें, अच्छी बात है कि ये बातें डिस्कस होती रहती हैं, बातें क्योंकि आपका स्पोर्ट्स से साथ भी तल्लक है, आप खुद भी क्रिकेट गालबन खेलते हैं, तो स्कूलों के लिए, अपना अच्छी खुराक के लिए और उसके लिए सेहत के लिए, ग्राउंडों में पब्लिक को लाने के लिए, क्रिकेट को ज्यादा आगे प्रमोट करने के लिए आप क्या खुद जाती तौर पर क्या कोशिश कर रहे हैं?
3: हमने सोनूस पुलचिक में फोकस किया, कहीं छिलछे में उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं कि अल्कोहल कंट्रोल हो, जल्दी उम्र में ना पीना शुरू करें लोग, सिगरेट से दूर रहे, पफ्स जो ई सिगरेट होते हैं उससे दूर रहे, और एक्टिव मशहूर त्योगा करें, उस पर हम फिटनेस क्लूपा पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उनकी फैसिलिटी भी में भी करते हैं। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, हमारे पास भी क्रिकेट क्लब है, ये जो क्रिकेट क्लब है ना हमारा ग्लोस्टॉप में, उसमें इतना ना जो मेरा एक्सपीरियंस था यही है कि कमून उनकी ज्यादा सुनता नहीं है। मैंने बस यही किया अभी तक, मुझे 6 महीने ही हुए हैं एक रिलेशन अच्छा बनाने के ग्लोस्टॉप के साथ, क्रिकेट क्लब के साथ, कि उनसे मैंने ये बस यही किया है कि एक मीटिंग करा दी है मेयर के साथ, और वहां जो भी मुद्दे थे वो डिस्कस हो गए हैं। उनका एक भी मुद्दा था कि जब विंटर सीजन होता है तो ट्रेनिंग बहुत कम होती है, तो इससे लिए बच्चे सही तैयार एंड फिट नहीं होते जब आउटडोर सीजन शुरू होता है, और वो उस चीज पर हमने बड़ा फोकस किया हुआ है, और ये इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो उस पर भी देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं, कि इनको थोड़ा इन पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मगर आपने ये भी सोचना है कि ये बस ग्लोस्टर क्रिकेट क्लब की बात नहीं है, कई हमारे पास कई क्लब्स ने, हॉर्नबॉल क्लब भी है, स्विमिंग क्लब भी है, गर्ल क्लब भी है, फुटबॉल क्लब भी है, सो बास्केटबॉल क्लब भी है, तो ये सब हमसे रब्ता करते रहते हैं, और हम इनको बहुत अहमियत देते हैं, हम बजट में भी इनको काफी कुछ देते हैं हर साल।
0: तो वकार, जब बजट आपका बढ़ जाता है तो फिर आप बजट की कमी को पूरा किस तरह करते हैं?
3: हम जब एक ही एक्सरसाइज होती है बजट कट, उसमें यह होता है कि सर्विस फॉरेनर से करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, यही इसी कहते हैं एंसवा लेना। और हम लास्ट ईयर हमारा बजट बड़ा बैलेंस रहा, मैं इस दफा जो नजर आ रहा है हमने कोई पैसे कट करने हैं मजबूरन, क्योंकि वरना अगर हम बजट कट ना करें तो हम ना फिर गवर्नमेंट आके हमारा कमून का बजट टेक ओवर कर लेती है, फिर वो डिसाइड करेगी कि हमने पैसे कैसे यूज करने हैं, इसलिए हम वी हैव टू डू इट। और हम जब करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बच्चों बूढ़ों को ये फील ना हो ज्यादा, तो जब ये दो साइड में हो गए तो रह जाता है सड़कें और पार्किंग एंड फिटनेस क्लूपा स्पोर्ट्स क्लूपा, और उन पर फिर हम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं है कि हम उनके ही बस फोकस करते हैं, हम थोड़ा बैलेंस करके करते हैं।
0: वकार, आप अपने जो आपके वोटर सपोर्टर होते हैं, पार्टी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा मेयर की जगह भी काम करने पड़ जाते हैं, तो आपको खुद कैसा लगता है?
3: देखिए मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, मैं शुरू में से ही मेजोरिटी में रहा हूँ और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मौका मिला है इन्फ्लुएंस करने का, कमून का जो पूरा लीडरशिप है उनसे भी अच्छे तलाकात है मेरे, और उनसे जो होता है ना मेल मिलेदा से भी उनसे भी अच्छे तलाकात है मेरे। ये एक ऐसा काम है जहाँ आप दिन ब दिन अपना ना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करी जाते हैं, और मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा पहला जो पीरियड था वो थोड़ा एनोनिम था, मगर अब जो है वो मैं इनर सर्कल के अंदर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। इसके अलावा बंदा कह सकता है कि जब फिर आप नजर में भी आते हो, आपकी हर जो होती है ना डिसीशन उस पे लोग उंगलियां भी उठाते हैं, एंड मगर आई एंजॉय दैट। ये हर किसी के बस में नहीं होता कि जब आप कमरे में बैठे हो तो आपके आप पे इतनी नजरें हो और लोग इतनी बातें करें और आपने ठीक तरीके से उनसे ये बातचीत करनी है, बहस करनी है, अपना मौकफ रखना है और डिस्कशन को जीतना भी है, और ये पूरा प्रोसेस आई एंजॉय दैट। मगर इसके अलावा ये कमून मेरा शहर है, मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही मैं स्कूल में भी गया हूँ, पढ़ने में भी गया हूँ, मैंने क्रिकेट भी यहाँ बचपन से खेली है, फुटबॉल भी खेला है, सो ये मेरा कमून है, आई नो माई सिटी और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: इसका
3: मगर
0: मतलब है
3: थोड़ा
0: कि आप
3: डिफरेंट
0: सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब ये हाजिरी वगैरह को होती है, बातें होती रही हैं, कम्यून्स की मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ की जब बैठे जहाँ जहाँ बैठे होते हैं वहाँ की मीटिंग्स होती हैं, तो हाजिरी के लिहाज से आपका नंबर कहाँ आता है?
3: मैं तो हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, सो आई बिलीव टॉप में ही आता है।
0: तो ज़बरदस्त सीट आप पे आता है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो बाकी लोग को, आपको पता है, बाज़ जगहों पे सुनने में मिलता है कि लोग आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, हाजिरी की शक्ल तक ही रहते हैं।
3: वो मेरा ख्याल वो लोग करते हैं जिनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता या कोई पावर नहीं होती, वो बस कुछ कर भी नहीं सकते ना, बस गिला शिकवाई कर सकते हैं मगर उनकी कोई पॉलिसी कंप्लीट थ्रू नहीं जाती।
0: मतलब है कि ये अच्छी बात है कि आप जो है वो कहते हैं कि पहली दफ़ा मैंने सुना है कि आप इंजॉय करते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं, मैं इंजॉय, आप पार्टिसिपेट करते हैं, हाजिरी में आपके टॉप में आते हैं, लिस्ट में आपका नाम आता है, तो इसके अलावा कोई आप बात करना चाहें, आप कहना चाहें, चूंकि लोगों की डिमांड्स तो बड़ी होती है, मेरा ये काम कर दें, मुझे ये कर दें, तो शायद बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन काम तो यहाँ कानून करता है।
3: जी ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि जब एक बंदा मुझे वोट देता है तो मैं उनका हर काम कर सकता हूँ, आला कानून इजाजत भी ना दे या ऐसा कोई मसला भी हो जहाँ मैं मेरे पास कोई पावर भी नहीं है, भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कर सकता हूँ। कई लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए ये भी काफी होता है कि मैं कोई ठीक पावरफुल बंदे से मीटिंग ही करा दूं। जैसे मैंने मेयर से मीटिंग कराई थी, एक और भी एक दो केस थे जहां कोई ना मिलियो टेक्निक के सेंटर शेफ हो गए, उनसे मैंने मीटिंग करा दी क्योंकि एक मसला होता है प्यूकुचलर्स का, उनसे भी मीटिंग करा दी। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने भी, अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं ना अपने पावर में रह के उनके भी ना बहुत प्रेशर डाल सकता हूँ, इतना डाल सकता हूँ कि वो स्ट्रेस में चले जाए। वो ये हुआ भी है हमारे ना कोई पार्टी में लोग थे, हर पार्टी में नहीं, मैं जिस पार्टी से हम सवा बैठ करते हैं,
0: लेकिन ये सब कुछ वो पहली दफा आए थे। होता है ना,
3: हाँ, क्योंकि हम पॉलिटिक्स, आप ऐसे देखना है कि जो होते हैं ना डायरेक्शन या मजा पाटा खमून के, वो तरफ्ट हंसिया करते हैं, हम जो है हम स्ट्रेटजी और ऑडिट भी हंसिया कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब है कि नजर रख सकते हैं कि लोगों ने काम ठीक किया है, और अगर हमें लगे कि वो ठीक नहीं कर रहे तो हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं, पूरा प्रोसेस मांग सकते हैं कि ये आपने फैसला दिया, आप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि कैसे किया है। और अगर वो करे भी एक्सप्लेन, तो फिर मैं उस एक्सप्लेनेशन पे एक नया पॉइंट डाल सकता हूँ कि ये भी एक्सप्लेन करें, ये भी करें, ये भी करें, उनके तक 3-4 दिन इसमें लग जाए। तो वो भी डरते हैं इस चीज से, क्योंकि ये हुआ है कि एक डिपार्टमेंट के 3 बंदे बीमारी मार के घर बैठ गए थे एक बंदे की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से। और मेरा फोकस यही होता है कि खास तौर पर जब आप पावर में हो कि आपके तलाकात अच्छे हों डायरेक्शन से, कमून के मतलब पायरा से, क्योंकि इन्हीं से तरह आपने काम करवाना है।
0: वकार, आपसे अगर सवाल करें, अगर आप मेयर की सीट पर बैठे तो आप अपनी काबीना जो भी कमेटी होती है, ये भी एक छोटी सी पार्लियामेंट होती है, तो आप ये चीजें हैंडल कर सकते हैं?
3: मुझे लगता है कि हर बंदा कर ही सकता है, मगर ये दुनिया का काम है बताना कि कितना अच्छा कर रहा है। हर बंदा तो यही समझेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर उसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता जो दुनिया का करता है। मगर मेरे इनर फीलिंग यही है कि ये जब ये दूसरा पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे इस चीज में 8 साल हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स अगर मैं ना कर सकूं तो कोर्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो पेंशन में चले जाएंगे हमारी पार्टी के, और हमारे कमून में रह जाते हैं कोई 6-7 बंदे, और हमारी पार्टी में रह जाते हैं कोई 3-4 बंदे, सो इनमें से मेरी गिनती होती है, और आई बिलीव मैं कर सकता हूँ। सवाल ये पड़ता है कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं और इस चीज पे मेरा इस वक्त कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है मेरा। जैसे आपने इंट्रो में कहा था, मेरी भी बहुत अच्छी जॉब है और उस फील्ड से मुझे फिर छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये मैंने नहीं कभी भी सोचा था इस चीज में आते वक्त कि मैंने अपना जो प्रोफेशन है उसको छोड़ना।
0: वकार, आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी को, अपने वोटर सपोर्टर को, डेनिश में, इंग्लिश में, किसी भी जुबान में आप दे सकते हैं, 2 मिनट हैं आपके पास।
3: चलो उर्दू में बोलते हैं, मैं बस यही कहूंगा कि इस दफा जो मेरा इलेक्शन था बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर वोटर्स का जिसने मुझे वोट डाला। मैं बस यही कहूंगा कि इस वक्त जो काम हमारा हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, जहां हम यही हमारा फोकस है कि हमारे स्कूल के बच्चे, स्कूल की फैसिलिटी अच्छी हो, हमारे की वोकल स्टूल की फीसें, पढ़ने की फीसें कम हो, हमारा जो एल्ता फ्लाई है उनको भी अच्छी सहूलतें मिले, फॉर एग्जाम्पल उनको शावर देना होता है एक दफा हफ्ते में, ये हम थोड़ा ज्यादा करवाना चाह रहे हैं इस गर्मी में खास तौर पे। और इसके अलावा हम शहर में फ्लैट्स बनवा रहे हैं, कोई प्राइवेट्स हैं और कोई एलमिन पोली भी है, एलमिन पोली की वेटिंग लिस्ट इस वक्त है 15 साल 4 कमरे वाले की, और वो लिस्ट मेरा फोकस है कि कम हो, तो हम बनवा रहे हैं एलमिन पोली। एंड इससे अलावा बंदा कह सकता है कि मैं til rådighed hun. Har det, hvis man ikke kunne i masla hot, der har jeg bygget teknik, og jeg har skole, og jeg har kisset og kisset, og jeg har kommunen administration, så der med unge masla, jeg har jo hotan af facilitator, ban sakta hun, og man giver vi jo, jeg karta vi jo, og karta runga, kjøkke jeg ikke har kam med dig, at prøve at interesse handle karna. Så ja, med काम कर रहा हूं करता रहूंगा आई थिंक दैट्स इट
0: वकार आपका बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया इंशाल्लाह आपसे رابطہ رہے گا
3: थैंक यू अलात इनविटेशन के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका
0: सामान्य नाज़रीन ये थे वकार जो के सिटी काउंसलर हैं और मेहनती हैं पढ़े लिखे हैं बड़ी खुशी उनकी बात सुनकर के वो अपने काम को जो है एंजॉय करते हैं और बड़ी अच्छी तरह खुश होते हैं अपना काम करके किसी की मदद करके अपना कमेटीज की मीटिंग को अटेंड करके टॉप लिस्ट में उनकी हाजिरी से आती है तो सामने नाज़रीन यही है इस जमहूरी मुल्कों में इसी तरह काम किए जाते हैं और इसी तरह काम होते हैं सामने नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें
4: सामेईन कराम FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं
0: तमाम ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो बराह रास्त अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको पता है कि गर्मी भी जो है वो जोरों पर है आवाज़ चलती है लेकिन गर्मी ज़्यादा है लोगों ने घरों में एयर कंडीशन लगा लिए हैं उसके अलावा घरों में पंखे सामने पंखे भी मार्केट में अब मिलने जो है वो बंद हो गए हैं दो दिन पहले मौसम ठीक हो गया था लेकिन यहाँ भी मौसम तब्दील होते रहते हैं जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है पूरी दुनिया की पाकिस्तान ईरान की अमेरिका की इसराइल की इसी तरह यहाँ का मौसम भी जो है उसी जंग की हालत में रहता है तब्दील होता रहता है लेकिन इस मौसम को लोग इन्जॉय करते हैं फ़ायदा उठाते हैं धूप से फ़ायदा उठाते हैं इस मौसम से फ़ायदा उठाते हैं बच्चों को चूंकि स्कूलों में छुट्टियां हैं तो इसकी भी एहतियात करनी चाहिए मासूम बच्चों को धूप में नहीं निकालना चाहिए तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक जो हैं वो आपको बताएंगे धूप के मतलब बचाव के मतलब बच्चों के मतलब और जो सियासी तब्दीलियाँ होती रहती हैं और जो एक नया मौलाना साहब ने कट्टा खोल दिया शोदा के बारे में जो उन्होंने बात की है सबके दिल जो है वो रंजीदा हैं उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थे उन्होंने जो जब्बर जलसा में बात की है वो एक मजहबी लीडर का बयान इस तरह नहीं आता वो तो एक किसी गुंडे का बयान आता है जो जिस तरह कोई सियासी गुंडा होता है जब बयान देता है किसी मल्ले गली का गुंडा होता है जो बयान देता है तो मौलाना तो एक बड़े बाइज्जत इंसान है पार्लियामेंट के मेंबर कितनी बार बने कश्मीर कमेटी के मेंबर कितने साल रहे और एक बहुत बड़ी जमात को रन कर रहे हैं उनके बंदे सेनेट में भी हैं पार्लियामेंट में भी हैं सूबाई असम्बली में भी हैं तो मौलाना साहब आप स्टेट के मुलाजिम हैं ये जो MNA है ये आपकी अपनी शिव नहीं ये आपको स्टेट ने दी हुई है आवाम ने दी हुई है आप स्टेट के लिए सारा काम करते हैं अगर आप स्टेट के खिलाफ गए हैं तो फिर गद्दारी के मुकदमे इसी तरह चलते होते हैं आप तो बड़े बाइज्जत बड़े आपके वालदे मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब बहुत ही काबिल वज़ीर आला रहे वो सरहद के तो मौलाना साहब आपने क्या कर दिया इससे आपको क्या मिलेगा इस उम्र में उस उम्र के हिस्से में आपको क्या मिलेगा ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे शाह साहब एक बार फिर आपको दर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजा गफूर साहब आपको आपकी टीम को आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम गर्मी वाकई टॉप पे है इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं है ये 26-27-28 डिग्री है लेकिन फील लाइक जो है वो इससे एक डिग्री ज्यादा हो रही है आप धूप में थोड़ी देर ज्यादा खड़े रहे 3-4-5 मिनट तो आप अनफ विटामिन डी ले सकेंगे और इसके अलावा अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो पानी की कमी आपके जिस्म में बहुत हो जाएगी इसको जब आपको पसीना आ रहा है आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आप ब्राय मेहरबानी पानी जरूर पिए देखें कोको कोला या किसी किस्म की जो ड्रिंक है वो हेल्प नहीं करती इसमें आपको सिट्रस पानी जो है नमकीन पानी जो है नींबूदार पानी जो है ये आप पिए इससे आपको जो है या आप अगर आपको बहुत तलब है तो आप कावा पी सकते हैं लाइट कावा जिसे टर्किश कावा कहा जा सकता है अफगानी कावा कहा जा सकता है या आप उसको ये कह सकते हैं कि लाइट पाकिस्तानी चाय पी लें लेकिन कॉफीन वगैरह से इस गर्मी में आप थोड़ा सा एहतियात बरतें क्योंकि कॉफीन जो है वो आपके दिमाग पे असर करती है ऑलरेडी जब आपके जिस्म में पानी कम होगा تو کافین جو ہے وہ زیادہ جلدی اثر کرے گی. دوسرا جو ہمارے بھائی ٹیکسیاں یا گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ٹیمپریچر جو ہے اس کو مائنس نہ کریں اس کو, کیونکہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہوگا تو لہٰذا اس کو 22-23 پہ لازمن رکھیں, 21 پہ رکھ لیں, اس سے کم نہ کریں, کیونکہ اس سے آپ کے ٹخنوں میں, گھٹنوں میں, ٹانگوں میں, ٹانگوں کے مسلس کے اندر جو ہے وہ لانگ ٹرمز پرابلمس کریٹ ہوگی, پرابلمس آ جائیں گی, آپ کے جو الاسٹک ہیں ٹانگوں کے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, تو اس سے آپ کو کافی پرابلم ہوگی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اتنی دھوپ میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں, اور اگر آپ سادہ پانی نہیں پی سکتے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو طلب ہوتی ہے تو فاک سے کونڈی لے لیں, یا آپ اس طریقے سے, میں ان کا ایجنٹ تو نہیں ہوں لیکن یہ ایک بیسٹ چیز ہے جو آپ کو شوگر دے سکتی ہے, یہ کوکو کولا اور دوسری پیپسی وغیرہ سے بہتر ہے, لیکن اگر آپ پانی رکھ لیں, سٹرس وینٹ رکھ لیں, تو وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ آپ کے جسم میں اثرات کرے گی. اور اگر آپ نیمبو پانی رکھ لیں تو وہ تو سب سے بہتر ہے, کیونکہ آپ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ میرا خود ذاتی تجربہ اور میں نے لوگوں سے بھی سیکھا ہوا ہے کہ جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور دھوپ ہو اور اندر ایئر کنڈیشن لگا ہو تو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, اور جب آپ کو نیند آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں گے, آپ کی آنکھیں کھلی ہیں, لیکن جب آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا اور سیکنڈز کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, تو اس لیے پلیز اگر آپ پانی پی رہے ہوں گے تو آپ کا پانی جو ہے وہ توازن برقرار رکھے گا باڈی کے اندر, تو آپ فریش رہیں گے. تو بچوں کو اور بوڑھوں کو تو پانی جو ہے وہ مسٹ پینا چاہیے, ہر آدھے گھنٹے 45 منٹس کے بعد بچوں کو پانی پلائیں, خود بھی پانی پئیں, کیونکہ یہ جو گرمی ہے بچے بتا تو نہیں سکتے, بیبیز اور بچے بتا تو نہیں سکتے, لیکن پانی کوشش کریں کہ پئیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اپنی احتیاط کریں. اور یہ جو لاوا آیا ہوا ہے, یہ آیا تو باہر سے ہی ہے, لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوسکی لاوا اس کو کہا جاتا ہے, ہماری زبان میں جہنم کا کیڑا کہیں گے, یعنی گول, ایک قسم کی گول ہے, ہمارے پنجابی زبان میں اس کو بمبو کاٹ کہتے تھے, یہ زیادہ تر شتوت کے درختوں پہ اور یہ جو ہوتے تھے آم کے درخت یا جو جامنوں کے درخت ہوتے تھے ان کے اوپر یا کسی دوسرے میٹھے فروٹ کے اوپر یہ بہت زیادہ پائے جاتے تھے, اور اس کے حل بھی جو تھے لوگوں کے پاس اس زمانے میں ہوتے تھے, لیکن اب کیونکہ یہ ڈنمارک میں آ گیا ہے, فیون کے اندر جو ہے پورے جزیرے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے, یہاں آما پہ بھی ہے اور یولینڈ کے کچھ کمیونوں کے اندر ہے, تو آپ یہاں سفر کر رہے ہیں, چھٹیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کوشش کریں, اور یہ لاوا صرف درختوں پہ نہیں رہتا, یہ باغات کے اندر گھومتا پھرتا بھی ہے, لہٰذا اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ آپ نے لاوا اس کو نظر آ گیا ہے تو آپ فوراً سے پہلے جو ہے اپنے گورنمنٹ کو اطلاع کریں, آپ پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں یا آپ اپنی کمیون کو اطلاع کر سکتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ تو بچ گئے ہیں لیکن دوسرے کو بچے یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو ٹچ کر لے گا یا اس کے بال جو ہے وہ ہوا میں اڑ کے.
0: شاہ صاحب یہ تو آپ احتیاط ہیں, یہ تو لوگوں کو اب کرنی چاہیے, آپ بتاتے رہتے ہیں باقاعدگی سے, لیکن شاہ صاحب یہ جو گرمیوں میں سیاسی بیماریاں آ گئی ہیں, سیاست بالکل خاموش ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ لسٹیں بھی بن گئی ہیں, بریکنگ نیوز بھی آپ دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں کیا جا رہا, جو لسٹیں بنتی جا رہی ہیں, ذرا یہ ہمارے سامنے ناظرین سے شیئر تو کریں.
5: دیکھیں جی, اس وقت حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آج ہم نے گیدرنگ نہ کی, اب ہیٹ اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ڈینش یورپین پارلیمنٹ کا ممبر, جو ڈنمارک ڈیموکریٹ کا ممبر ہے یورپین پارلیمنٹ کا, اس نے یورپین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک نفرت انگیز, میں اس کے پورے ورڈ نہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, کیونکہ یہاں پہ آج کل اگر ایسی چیزیں لکھی جائیں تو اس سے آپ پہ کیس بھی بن سکتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں ہم پہ, تو یہ جو ورڈز اس نے کہے اس کے اوپر سویڈن کا اس کا ایک کلیگ جو عربی مسلمان ہے उसने उसकी ये स्पीच वहां पे देखी और उसने इसको फॉरन से पहले, वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसने स्वीडन से, तो उस अरबी ने इसको, स्वीडिश है, मैं अरबी सॉरी कह रहा हूँ लेकिन है वो अरबी नस्ल लेकिन वो है स्वीडिश, उसने इसको पुलिस एडमिट कर दिया और उसके ऊपर केस बन गया। अब ये अदालत का फैसला है क्योंकि ये पूरे यूरोप में इस बात को उठाया जा रहा है और अब डेनमार्क के अंदर भी आज और कल ये फैसले हुए हैं कि भाई यहाँ की जो तंजीमात हैं, खसूसी तौर पे मेंस का गाड़ी की जो इंसानी हकूक की जो तंजीमात हैं, उनको शर्म आ गई है कि वो शर्मा गए राजा साहब कि ये मुसलमान जो हैं, ये जो फॉरनर्स हैं, इनके अंदर इतनी तंजीमें होने के बावजूद ये आवाज नहीं उठा रहे, तो हम आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो साल या दो साल के ऊपर जो सजा आप देखे साल के ऊपर और लोगों को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे, ये जालमाना है और ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्दी है और इस पे आवाज उठाई जाए, इस पे बहस की जाए। तो अब उन्होंने ये आवाजें उठानी शुरू कर दी है, लेकिन हैरानगी की बात है कि हमारे किसी सियासतदान के ने इस पे नहीं लिखा, कोई कुछ कोई हमारे नजरियाती जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सब खामोशी से बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल में इस वक्त धूप में कहीं बीच में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं ग्रिल खा रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं एहसास के वो आने वाली नस्लों के बारे में अगर दो मिनट के लिए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोगों को आगाही दे, तो ये एक बहुत जुल्म की बात है। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि अब ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये पिछली दफा भी पीडीएम थी, इन्हीं के जरिए जी रही थी, अब ऐसी हुकूमत है जो सारी की सारी फॉरनर के वोटों से बनी है, फॉरनर्स के हमायत से बनी है, और वही फॉरनर्स के हमायत से बनने वाली पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इसने अब तार बतौर हमले जो है वो मुसलमानों पर करने शुरू कर दिए हैं और इसके ऊपर अब नजरियाती तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन लैंड का जो मसला आ रहा है उससे पहले ही हम ऐसी नफरत इनके ऊपर इनके दरमियान खड़ी कर दें कि यहाँ पे देखें आजकल डेनिश जो है वो खुद अपने डेनिश सियासी और ऐसे राशिस्टों का जवाब वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम राशिस्ट नहीं है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही। जब ये इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं तो फिर हमारी जो तंजीमात हैं जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इस्लामिक फाइनिंग बनी हुई है, तो उनको चाहिए कि सारे जोड़ के बैठ जाएं और फौरन से पहले इसके उसके ऊपर किरके मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं उससे और कल्चर मिनिस्ट्री से फौरन से पहले बात करें। ये नहीं कि वहां पे कोई ड्यूटी भी नहीं है, ये इनका माइंडसेट। मैं अगले दिन एक रेडियो पे सुन रहा था तो वो कह रहे थे जी कि छुट्टियां हुई हैं, हर कोई बंदा जो है वो कामों में लगा। नहीं, ये गलत बात है। आप फॉरेन मिनिस्ट्री में टेलीफोन करेंगे, वहां की बहुत सर्विस है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी आज भी दे रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, इसी तरीके से इनरीस मिनिस्ट्री, जस्टिस मिनिस्ट्री और कल्चर और दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी जो उम्बसमैन है वो बैठे हुए हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, वो आप उनको मेल भेजते हैं, कोई चीज भेजते हैं तो वो उसका जवाब जो है वो देते हैं और वो कंप्लेंट्स को कर सकते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो अब एक्टिव नहीं होती और ये सोचते हैं कि यार अब हमें क्या, तो कल को जो ये चीजें हैं, ये जो नफरत है, खुदा ना करे यहाँ पे बेलफास्ट वाला, इंग्लैंड वाला मसाइल यहाँ पे होने शुरू हो जाए, या जैसे अमेरिका में हो रहा है, अगर ऐसी चीजें यहाँ पे हो जाए तो फिर हम लोग तो बहुत ही कम लोग हैं और पुरअमन लोग हैं।
0: हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच अपने मिजाज के मुताबिक है ना, जो मर्जी होती है उस तरह हम सोचते हैं। शाह साहब देखे ना, सेहत के लिहाज से आप बात करते रहते हैं, क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं, इसी तरह जो है वो آزادی ٹورنامنٹ بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں شاہ صاحب چلتی رہتی ہیں. شاہ صاحب اب ایک کرکٹ میچ ہوا ایلبرسٹن میں ہوا یا جہاں بھی ہوا, اچھا میچ ہوا, ٹرافیز تقسیم کی گئی, لوگوں نے اسپانسر کیا, اچھی بات ہے جو ہے اسپورٹس کو پروموٹ کرنا. لیکن شاہ صاحب جن لوگوں ٹیموں نے جس ٹیم نے یا میچ آرگنائز کیا یا جو کچھ بھی کیا اس کے بعد ٹک ٹاک میں بھی یہ آنا شروع ہو گیا جی یہ تو 804 والے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا, دوسرا ایشو بن جائے گا. تو شاہ صاحب ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, جب کرکٹ کا میچ ہوا تو اس کو ٹک ٹاک کی شکل میں 804 والی شرٹوں میں کیوں شامل کرتے ہیں ہم لوگ؟
5: نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا, یہاں پہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے یہاں رہتے ہوئے بھی ڈینش پاسپورٹ لیے ہوئے بھی یا بغیر ڈینش پاسپورٹ کے بھی وہ آج بھی پاکستان اسٹیٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور یہ بہت بری بات ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر آپ کو اعتراض آتا ہے, آپ پیپل پارٹی کا برا بھلا کہیں, ان کا صدر ہے, آپ وزیر اعظم کو برا بھلا کریں, وہ نون لیگ کا ہے, اسی طریقے سے کاف لیگ ہماری اس کے ساتھ ہے, اسی طریقے سے ایم کیو ایم ہے, جو جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں آپ ان کو ضرور برا بھلا کریں, لیکن جب
0: سیاسی طور پر
5: نہیں اسٹیٹ کو آپ جو ہے جو ادارے اسٹیٹ کے محافظ ہیں, آپ خواہ وہ پولیس ہو, خواہ وہ جسٹس ہو, خواہ وہ اپنا فوج ہو, کوئی بھی ادارہ ایسا ہو, آپ اس کو گالی کلوچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں, انہیں کی وجہ سے اسٹیٹ بنتی ہے اور وہ آپ کو تحفظ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ کرکٹ کا کرتے ہیں اسی طریقے سے ارینجمنٹ جو ہیں اگر وہ کرنا شروع کر دیں, کم از کم ایک ماہ میں دو تین ایسی ارینجمنٹ کریں اور اس کے اندر اپنی جو پرابلمس ہیں لوگوں کے ان کو سنیں, ان کو ہائی لائٹس کریں, تو ان کو بتائیں کہ یہاں کے قوانین جو ہیں ہم کیسے بات کرتے ہیں, تو یہ ہو جائے گا. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ میری فلانے منسٹر کے ساتھ بات ہوئی, میرے فلانا پولیٹیشن میرا بہت پیارا دوست ہے, میرا فلانا جو ہے اتنا قریبی ہے, لیکن جب وہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے ہی وہ مستقبل یہاں پہ تاریخ کر رہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, وہ آپ کے حقوق کے لیے نہیں بول رہا, آپ لوگوں نے جس پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے وہ پارٹیاں ہی آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں, یہ انیس لسٹن, یہ ایس ایف, یہ ریڈیکل ویلسا, یہ سوشل ڈیموکریٹ اور یہ دوسری پارٹی جو ہے الٹرنیٹو, یہ ساری کی ساری آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں, آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے کہ اس لیے کہ جی ہمارے لیے یہ بہت,
0: یہ خلاف کام نہیں کر رہی, یہ اپنے ملک کے لیے اسٹیٹ کے لیے تو کام کر رہی ہیں, تو جن ووٹ دینے والوں نے پارٹیوں کے ممبر جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ خود کہیں بولے نا.
5: دیکھیں جی جب یہ ہمیں یلو کارڈ دے دیتا ہے بائی کانسٹیٹیوشن آف ڈینمارک, ڈینمارک کے آئین کے تحت, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا, جب یہ ہمیں ایک یلو کارڈ سویچنگ فلک نمبر دے دیتے ہیں تو پھر ہم اسٹیٹ کے تحفظ میں آ جاتے ہیں, پھر ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اسٹیٹ کے قوانین کو کی عزت کریں, احترام کریں, اور اسی طریقے سے اسٹیٹ ہمیں پوری تحفظ دیتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, ہم لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل دو لڑکیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں, اور انہوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے تو اسلام کو چھوڑ دیا, اس کلچر کو چھوڑ دیا, اور اب وہ باتیں کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پیچھے کیا ہم لوگ ہیں؟ ہاں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, مسلمان ایک علیحدہ کلچر میں رہتے ہیں اور ہر مسلمان ایریا اپنے ایریا کے کلچر میں رہتا ہے, اور اگر اس میں کوئی ڈرگز یوزر ہے یا کوئی اس کے اندر پروسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی دوسرا ہے یا کوئی ہوموسیکشل ہے تو وہ اسلام جو ہے اس کے ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ وہ انسان ہے تو وہ رہ سکتے ہیں. تو ہم جب ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی چیزوں کا پتہ نہیں, ہمارے جو علماء یہاں آئے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, وہ گوروں کو کوئی بات نہیں سمجھاتے, ان کے پاس کوئی ایسے ورڈنگ نہیں کہ وہ کیسے کانسٹیٹیوشن کو لے کے کانسٹیٹیوشن یہاں کے آئین کو سمجھ کر بات کرے. تو راجہ صاحب یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یہ ہماری ہی وجہ سے ہوئی ہیں, کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا راشسٹ کوئی نہیں, جو اپنے آپ ہم نے یہاں پہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ہم راضی نہیں ہوتے. ہمارا ایک دوست بھائی جو 70 سے ہمارا دوست ہے, جب اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا, وہ چھوڑ کے چلا گیا یا وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, تو ہم صرف مسجدوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ یار وہاں پہ تو یہ فلانا فرقے گا فلانے فرقے گا. یہ راشیزم ہمیں نکالنا پڑے گا, ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے لیے مسلمان ہونا تو بات کی بات, ہم سب سے پہلے اسلام ہمارا دین ہے اور ہم اسلام کے پابند ہیں, اور اچھے شہری بننا اور اچھے طریقے سے اس ملک کے اندر رہنا اور اسلام کا نام بلند کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ہم نہ لڑائی جھگڑے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں, نہ فساد پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ ہم ٹیررسٹ ہیں. کیوں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے, جو اسلام ہمیں سکھلاتا ہے وہ ہم کریں گے. اگر ہم آپ کے قوانین سے تنگ ہو جائیں گے تو ہم اس پہ بات آپ سے کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے. یہ دین ہمارا سکھلاتا ہے, ہمیں اگریسو نہیں ہونا, ہمیں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی. تو یہ راجا صاحب یہ چیزیں جب تک ہمارے لیڈران ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے, اور وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست کرتے ہیں اور پاکستان کی بولی بولتے ہیں, وہ ہر اپنے آپ کو بڑے چودھری اور بڑے بڑے راجا بڑے بڑے شاہ بڑے بڑے شیخ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو جب تک یہ کامیں رہیں گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری یہ جو تھرڈ اور فورتھ جنریشن اس ملک میں آ رہی ہے, یہ کل کو ہسٹری میں برے ناموں سے ہمارا نام لکھے گی اور یہ کہے گی کہ ان لوگوں نے سیاست کو یہاں اور یہاں کے قوانین کو برا اور بدنام کیا. جی راج صاحب.
0: شاہ صاحب, مفادات کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ آپ بلانگ ٹو آرمی فیملی کرتے ہیں, آپ کے والد محترم پاک آرمی میں رہے, تو ابھی جو بیانات آ رہے ہیں, مولانا فضل رحمان صاحب ایک بڑا نام ہے, مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے ہیں, دینی لحاظ سے بڑا ان کا نام ہے, سیاسی لحاظ سے بڑا نام ہے, وہ پارلیمنٹ میں اب بھی موجود ہیں اور کئی دفعہ ممبر بن چکے ہیں, کشمیر کمیٹی کے رہ چکے ہیں, لیکن یہ جو لینگویج ہم آپ سنتے جا رہے ہیں لیڈران کی یا علماء کی جو اسٹیٹ کے خلاف, شاہ صاحب کیا آپ کے والد محترم پیسے کے لیے فوج میں گئے تھے؟
5: نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تو ہمارے خاندان میں اگر وہ گئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے ملک کی خاطر جا رہا ہوں اور میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے, کیونکہ قائد اعظم کا حکم تھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے, تو جو ینگسٹر پڑھے لکھے ہیں, میرے والد صاحب انجینئر تھے تو انہوں نے پڑھ رہے تھے انجینئرنگ, تو انہوں نے کہا کہ گریجویشن میں نے ختم کر لیا, تو یہ حکم آیا کہ بھائی آپ لوگ جنہوں نے کر لیا وہ فوراً جو ہے آرمی کو یا دوسرے سول اداروں کو جوائن کریں. تو میرے والد صاحب نے اور ان کے بڑے بھائی نے دونوں نے آرمی جوائن کر لی, اور دونوں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے اور انہوں نے آرمی میں,
0: سارے جو آرمی سے شہدا ہیں آرمی کی جنہوں نے نوکری کی, مولانا صاحب نے ایک بڑا بیان دیا, سیاست دان ہیں, جمہوریت پسند کی دعوے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب مولانا کے سامنے فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, اب تو وہ دونوں ایک پیج پہ آ چکے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں جو کہا کرتے تھے اس کے اپنے الفاظ بھی تبدیل کیے. تو شاہ صاحب, جو شہدا کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے, سب شہدا کی جو انہوں نے جو ہے وہ میں سمجھوں ان فیملیز کی توہین انہوں نے کی ہے, تو لوگوں کے دل افسردہ ہیں, تو ایسے بیانات شاہ صاحب دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ پیش کرے, کوئی دینی بات کرے, اور آپ نے اس سٹیٹ کو اس فوج کو چیلنج کر دیا, اگر آپ فوج کو مائنس کر دیں تو پیچھے کیا بچا؟ شاہ جی,
5: جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہم رہتے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دھڑا بندی کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اتنی زیادہ نفرت. دیکھیں جن لوگوں نے یہ لوگ جو ہیں, آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, آپ ان ساری پارٹیوں کو دیکھ لیں, یہ ساری کے ساری آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں, یہ فوج کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, ایک بھی ادارے کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں, تو اگر ایک انڈیویجل پرسن ہوتا ہے, ایک ذاتی کسی جج کے خلاف یا کسی پولیس والے کے آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس کی ذاتیات پہ آپ کیچڑ اچھالتے ہیں, لیکن جب آپ اداروں کو بلیم گیم کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کے غدار ہو گئے ہیں, آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں, اور اس کی ہر ملک کے دنیا بھر کے جتنے بھی ملک ہیں, ایون ڈنمارک کے, اس کا ایک ہی ہے, ڈنمارک میں سزائے موت نہیں, لیکن یہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ساری عمر جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے کہہ دے تنہائی ہی کاٹنی ہے. تو ہمارے ملکوں میں سزائے موت ہے, ساری دنیا میں, امریکہ میں بھی سزائے موت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ احتیاط کریں کہ ایسے وائلیشن نہ کریں, ایسی چیزیں نہ کریں. اگر ذاتی طور پہ آپ کو کوئی رنج ہے, ابھی میں ایک بندے کا فیس بک پہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی کہ جی ایوب خان کے زمانے میں 1962-1960 میں کیا نام ہے بلوچستان کا برا حال تھا, پاگل کے پیچھے. میں خود وہاں پہ اس وقت تھا کوئٹہ میں, اور میرے والد صاحب اس وقت انفینٹری کورس کر رہے تھے, اور میں وہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ تھا, میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں پہ پیدا ہوا اور کوئٹہ کے اندر. تو میں یہ تمہیں بتا دوں کہ کوئٹہ واز ون آف دا بیسٹ سٹی پاکستان کا اس وقت. وہاں پہ اتنا امن تھا کہ ہم لوگ باہر پکنک کے لیے چلے جاتے تھے, بچے سڑکوں پہ کھیلتے تھے, امن و امان تھا, اتنے اچھے لوگ وہاں رہتے تھے. یہ تو آپ لوگوں نے افغانیوں کو بھائی بھائی کہہ کے افغانیوں کو پاکستان میں بلایا, پختون بھائی ایک ایک کر کے نعرہ آپ نے لگایا, پاکستان کا ستیہ ناس آپ نے کیا. جب وہ یہاں پہ آگے پھر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے, نہ وہ آپ کے افغانی بھائی ہیں, نہ آپ کے پشتون بھائی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ نفرت کا. کیونکہ یہ قومیں جو آئی تھی یہ محنت کش تھی, انہوں نے جابز لے لی, انہوں نے آپ سے زیادہ اچھا تجارت کرنی شروع کر دی, اور اس کے خلاف اب لوگوں نے محاذ کھڑا کر لیا. یہی سیاسی پارٹی ہے, ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے, اور پھر جب پارلیمنٹ میں آ جاتی ہے اور پھر بھی یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پیسہ لیتی ہے. اربوں کھربوں ڈالر جو ہے یہ سالانہ بلوچستان اور سرحد کے لیے لیتے ہیں اور سندھ کے لیے. کیا انہوں نے وہاں پہ کسی جگہ پہ ترقی کرائی ہے؟ نہیں. ان کے بچے باہر رہتے ہیں, یہ سارا پیسہ انہوں نے دبئی قطر اور ساری دنیا میں انہوں نے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے, دنیا بھر کو انہوں نے امیر کر دیا ہے. انگلینڈ جیسے ملک کو جو دوسری جنگ عظیم میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا, انہوں نے آباد کر کے رکھ دیا, اور آج یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کچھ نہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ 40 پینسلوینیا امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ایک باقاعدہ ایک شائع کیا کہ دنیا کی پاورفل کنٹریز کون کون سی ہے, اکنامیکلی ہب اور دوسری, اور طاقت کیسی ہے ان کے پاس, ان کی فوج کیسی ہے. اس کے اندر سارے ملک ہیں, ایران بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سارے ملک ہیں, لیکن 40 ملکوں کے اندر پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے جس کے لوگوں لوگ اگر سائیکل خریدتے ہیں یا کوئی ایسی گھر خریدتے ہیں تو وہ کیش خریدتے ہیں. یہاں پہ یورپ میں کتنے بندوں کا اپنا گھر ہوگا, ڈنمارک میں میں کہہ سکتا ہوں میں جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ میرا گھر ہے, لیکن ایکچولی وہ جو ہے وہ بینک سے پیسے لیے ہوئے ہیں, بینک کو وہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, وہ ساری عمر آپ کا نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے ہمارا ملک جو لوگ ہیں یہ خود ہمارے ساتھ غداریاں کرتے ہیں, یہ خود ہمیں اس ہمارے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ناکو چنے چبا دی اور وہاں پہ اس کو اتنی بڑی شکست دی ہے پچھلے سال. ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان, اور یہ کون ہے غدار وطن ہے جو ملک کے خلاف, ملک کی فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو راجہ صاحب ان کے اوپر اگر بولنا چاہے تو ہم سارا دن بولتے رہتے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جس کے گلے میں سیمنٹ اور سریا میں نے لگا دیا ہے وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وطن ہے تو ہے, اسی وطن کا پاسپورٹ لے کے آئے ہیں تو اسی وطن کے ساتھ محبت کریں, اور اگر اس محبت سے اتنی آپ کو نفرت ہے تو پھر پاکستانی کھلانا چھوڑ دیں اور جائیں جہاں آپ نے جا کے رہنا. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب دیکھیں نا, بات کا آگی پاکستان کی بات آگی, بات ہم نے شروع کی تھی یہاں کھیل کے میدانوں کی بات کی تھی, صحت کی بات کی تھی, آپ نے بیماریوں کے متعلق بتایا. اب جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اس میں علماء بھی جاتے ہیں, دوسرے لوکل لوگ بھی جاتے ہیں, تنظیمات کے لوگ بھی جاتے ہیں. تو شاہ صاحب اگر کوئی اچھا ٹورنامنٹ ہوا ہے, اچھی لوگوں نے کوشش کی ہے, انعامات تقسیم ہوئے ہیں, تو شاہ صاحب اس کے بعد یہ 804 والی وردیاں پہنا کے میاں صاحب کو پی ٹی آئی کا شو کرنا, تو امبیسڈر صاحب بھی وہاں مہمان خصوصی سے, تو شاہ صاحب ہمیں سب کو اپنے اپنے گربانوں میں تو جھانکنا چاہیے.
5: دیکھیں جی اس وقت جو مرضی کوئی کہے, کوئی پی ٹی آئی کا بنے, کوئی کسی کا ہو, اس وقت سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ آپ اس تنظیم کو دیکھیں, آپ اس ملک کو دیکھیں جس ملک سے آپ کی وفاداری ہے. آپ اگر پاکستان کے خلاف, میں کبھی بھی, مجھے عرصہ دراز ہو چکا ہے میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست کے اوپر بات نہیں کرتا, لیکن آج میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ چھٹیوں کے ان دنوں میں اگر آپ ایکس پہ جاتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں, تو ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان سٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے. تو خدا را کچھ اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے. کل کو اگر یہ ہمیں ان ملکوں سے مجبور کر کے نکال دیتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو پاکستان جانا ہے, تو کم از کم جو آپ کی جدادیں ہیں وہاں پہ یا جو چیزیں ہیں, یا تو آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ بھی آپ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. آپ

0: और कल ह्यूमन राइट्स और दूसरी एजेंसियां जो हैं वो बोन इशू कर दिए हैं। पूरे दो साल हो गए हैं कि इन्होंने ये कानून 2023 में बनाया था, लेकिन कोई यहाँ के हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने नहीं बनाया। तो लिहाजा अभी ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने मुआशरे को सही करें और इन लोगों को देखें कि ये क्या कर रहे हैं।
1: शाह साहब, मैं चंद सुर्खियां पढ़कर आपको सुनाता हूँ, इससे सोच का अंदाज़ा होगा कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और हमें सोच समझ क्यों नहीं आती। शाह साहब, मैं मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ता हूँ। ईरान पर अमरीकी हमले, जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का ईरानी दावा। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से आम मुलाकात। बैरिस्टर गौर का आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात के बायकॉट पर नज़रसानी का अंदिया। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान के वज़राए खारजा अगले हफ्ते इकट्ठे होंगे। दिल का दौरा पड़ने से कबल अल्लाह रखा की बेटी को तलाक हो गई थी। रेंजर्स एहलकार शहीद। $100 मिलियन के मोबाइल की स्मगलिंग, पाकिस्तानी निसाद मुलजम अमेरिका मुंतकिल। एहसन इकबाल ने नेटफ्लिक्स सार्फीन को खुशखबरी सुना दी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ओकाइमा कमेटियों का बायकॉट खत्म करने का फैसला। यूरोपी परवाजों को खलीज के हदूद में परवाज ना करने की हिदायत। 400 किलो चांदी चोरी केस, साबिक क्रिकेटर कस्टम समेत मजीद 5 मुलजमान गिरफ्तार। शाह साहब, आप मुझे अंदाजा लगाएं, सुर्खियां को बिल्कुल शुरू से शुरू करें। आप अपनी सोच, इन लोगों की सोच का आप अंदाजा लगा रहे कि हमारी सोच को, हमारे जहनों को किस तरफ ले जाया जा रहा है, चूँकि हमारा टोटल इंसार अब जो है वो टेलीफोन पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जो है वो जा चुका है। चूँकि हमने खुद तहकीक बिल्कुल करनी नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, जो कुछ हमें पेश किया जाता है, जो कुछ सोशल मीडिया हमारे सामने रखता है, चारे की तरह डालता है, उसको हम चुकना शुरू कर सकते हैं। तो शाह साहब, हम डेनमार्क में रहते हैं, आप हमेशा जोर लगाते रहते हैं इस मुल्क की सियासी पार्टियों का हिस्सा बने, इस मुल्क की पार्टियों के मेंबर्स बने, इस मुल्क की पार्टियों में इलेक्शन ले, तो शाह साहब दिलचस्पियों का अंदाज़ा होता है ना। तो शाह साहब, फिर जो बातें आप कह रहे हैं कि ये कानून बन रहा है ह्यूमन राइट्स का, फलां चीज़ बात हो रही है, फलां कुछ हो रहा है, तो शाह साहब फिर किसका कसूर है?
0: देखिए जी, ये हमारा अपना कसूर है। मैं इसलिए इन लोगों को कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के हालात को देखें। आप ये देखें कि कल की बड़ी सुर्खी थी अखबारों में, खारिया का जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर या कौन, उसको डेनमार्क का वीजा नहीं लगा, और इसी तरीके से गुजरात का भी है, उसको भी नहीं लगा, लेकिन जो हवालदार या थानेदार थे उनको वीजे मिल गए डेनमार्क के। तो ये चीजें देखने वाली हैरान चीजें हैं कि सबसे ज्यादा खुदकशी की मौत जो है वो गुजरात शहर में हो रही है, और उनकी खबर जो लगी है वो बहुत अफसोसनाक है। आप ये देखेंगे इस वक्त जो पावरफुल लोग हैं उनको उनकी बख्शिश नहीं हो रही। वहां पे जो वो सीसीडी का जो महकमा बना है वो बगैर किसी अदालत में पेश, किसी जगह पेश हुए हुए हो, वो किसी भी बहाने में आपको सरेआम गोली मार देते हैं और जान से मार देते हैं, पुलिस मुकाबला शो करके, ना भी पुलिस मुकाबला वो आपको मार दे, उनको राइट है। तो आप कल को आप लोग जाते हैं पाकिस्तान में, मैं जाता हूँ, हमारी जो जदादे हैं वहां पे, हमारे जो घर हैं, कल को कोई बंदा क्या था जी, या तो बंदा मुझे बेच के चला गया हुआ है, करोड़ों की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, और अगर वो पुलिस को चंद लाख दे के तो ये पुलिस मुकाबला में हमें शो करके तो हमारा वहां खात्मा कर देते हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें कोई तहफ़ है? किसी को कोई तहफ़ नहीं। पहले आप होते थे कि जी ठीक है जी, आप फलाने गांव के, आप फलाने जी घर में कोई MNA MP है, आपकी मदद को आ जाएगा। अब तो आप देख लेंगे जो वहां पे
1: आप शाजी चूचे उस खत्ते को, उस जगह को, उस शहर को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी फितरत को, सियासतदानों की फितरत को आप जानते हैं, उनकी पॉलिसी को आप जानते हैं। आप देखे ना, कल तक हम जो एक प्रोग्राम किया ताकि शेयर भी हम कर दें कि नासिर भट्ट साहब हैं, कोई हैं वो अपना कह रहे हैं नून लीग के, उनके बारे में कितनी बातें की जा रही थी। जो कल परसों हमने प्रोग्राम देखा, एक प्रोग्राम हुआ वहाँ जो कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में हुआ, और उनके डेरे का इफ्तिताह भी हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लीडरान आए हुए थे, वहाँ तो नासिर भट्ट साहब को एक हीरो बना के पेश किया गया। तो शाह साहब देखे ना, हालात किस तरह तब्दील होते हैं, किस तरह बातें होती हैं, तो बात फिर शाह साहब घुमा के हम लाते हैं कि हम लोग यहाँ की सियासत क्यों नहीं करते।
0: जी बिल्कुल, नासिर भट्ट यहाँ पे एज ए वो आए हुए थे इंग्लैंड में, वो काफी सारी दुनिया उनको जानती है, वो इंग्लैंड में उन्होंने पनाह ली, सियासी पनाह ली हुई थी, आज वही पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल सही हो चुका है, और सेनेटर हैं वो पाकिस्तान के।
1: ऐसी कोई बात, दूसरे बात करूं, वो गुजरात वाले,

0: बात कर रहा हूं।
1: अच्छा, देखिए या गुजरात में तो आप जिसके पास टोयोटा लैंड क्रूजर बिशक कार के किराए पे हो, दो कपड़े जोड़े हो, वो माया लगी हुई हो, आप 2 दिन सर्कल रोड पे चक्कर लगा लें, तीसरे दिन आपको या मशीन में बन जाएंगे या आप कोई बड़े सरमायादार के नाम पे आपको मशहूर कर दिया जाएगा, अखबारी नुमाइंदे आ जाते हैं, उनके साथ खाना खा लें और उनको खाना खिला दें, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आप उनको खाना खिला देते हैं, तो वो एक हफ्ता अखबारों में आपको सुर्खियां लगाएंगे और आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बाहर के मुल्कों में शो कर देंगे, वहां बेशक हम लोग यहाँ पे बोरियां ही उठाता हूँ, मैं खुद हूँ ड्राइविंग करता हूँ, तो ये हमारी सुर्खियां लग जाती हैं। तो ये चीजें जो है राजा साहब, ये मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप बाइज्जत हो, आप बेशक दाल खा रहे हो, उसके साथ भी साथ चटनी हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, ये सबसे बड़ी नेमत है। देखें, मुझे एक बंदे ने पूछा, उसने कहा शाहजी फलाना बन गया, फलाना बन गया, फलाना बन गया, मैंने कहा बात सुनो, मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी हूँ। उसने कहा जी क्या नजर ही नहीं आ रहा आपके पास, क्या आप तो टैक्सी चला रहे हैं। मैंने कहा जो मेरे माँ बाप ने मुझे कलमा सिखाया ना, ये कलमा, ये जो अजान मेरे कानों में दी और जो जो कलमा मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया, इससे मैं दुनिया का खरबापति बंदा बन गया हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं परवाह कोई मर्सिडीज में फिर रहा है, कोई टोयोटा लैंड क्रूजर में फिर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई चिंचली में बैठा, मैं जहां पे भी बैठूंगा मैं अपने आप को वैसे ही तस्वर करूंगा जिससे का माहौल होगा। तो अगर हम लोग ये चीजें कंफर्म कर लें अपनी जात में कि हमने जब मिट्टी में जाना है, जब हमने इस 6 फुट की कब्र में हमने नीचे जमीन के अंदर जाना है, तो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा, किस तरीके से हम आ, आ, आ, आ, आ, आ, हम 2 दिन में कितने बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अपने जिस्म को, रूह तो देखती है ना, जिस्म गल सड़ रहा था उसके सामने, तो रूह देखती है कि मैं ये था, ये मैं तो कीप शाह था, मैं बड़ी बड़के मारता था डेनमार्क के अंदर, मैं बड़ी बातें करता था, ये देखो मेरा अशर क्या है। तो इसलिए तौबा करो ताकि वहां तुम्हें इस ऐसी चीजों से सुकून पहले आ जाए, ताकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप खुद भी ठीक हो जाए और अपनी औलाद को भी ठीक कर ले। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो हम यहाँ पे रोजाना इस्लाम के बारे में बात होती है, उसके साथ आप बाहर निकले, बात करें उनके साथ, देखें कम्युनिकेशन जो है नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन करना, आप कुरान पढ़ लें लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद आपको कुरान की समझ ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? जब तक कि आप कुरान के एक एक लफ्ज को आप अपने ज़हन शीन ना कर लें, अपने उसकी समझ ना आपको आ जाए कि इसमें मैं क्या बुराई कर रहा हूं, अपने ऊपर एप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने ऊपर उसको लेके
0: शाह
1: नहीं
0: साहब,
1: आएंगे,
0: वो तो
1: आप
0: चले
1: कुछ नहीं
0: दीनी
1: कर
0: लिहाज
1: सकते।
0: से हो गया ना, वो तो मजहबी लिहाज से बात हो गई नहीं। शाह साहब, हम खुद कहते हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी होते हैं, तो हम खुद रिकॉर्डिंग करवा कर कहते हैं कि हम इस असम्बली पर, इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, उसके बावजूद वहाँ के बेनिफिट भी सारे लेते हैं, सारा काम करते हैं। यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि हम वोट के खिलाफ हैं लेकिन जितने बेनिफिट हैं वो सारे हम लेते हैं। शाह साहब, डबल मोराल तो हम खुद लोग हैं, डबल मोराल लोगों को हम
1: बिल्कुल
0: सपोर्ट करते हैं। शाह साहब,
1: बिल्कुल, ये चीजें हैं कि इन इन लोगों का, देखिए मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो खानदानी लोग होते थे वो अगर सियासत करते थे तो वो सियासत के अंदर अपना भरम भी रखते थे, अपने डेरों को भी चलाते थे, हर एक चीज करते थे। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बदमाशी करते हैं, जिनका बुरा तौबा सफार करने, जिनको मैं आपको ये बताऊं कि ये पिछले हफ्ते की खबर है कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं और औरतें जो हैं, और फांसी इतनी फैल चुकी है लाहौर के अंदर, ये उनकी सबसे बड़ी खबर थी। तो ये देखें, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, इसमें हमारा खुद हाथ होता है कि क्यों, कि अगर हमारी माएं बहनें बेटियां जो हैं वो खुदकशी करने की बजाय वो अपना जिस्मानी धंधा करना शुरू कर देती है, बुराई करना शुरू कर देती है, तो इसके ऊपर हम जो लोग हैं, इस माशरे के जो लोग हैं, हमें अपने दिमाग को खोलना पड़े चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास फेरिये जाने के लिए, हमारे पास फलानी था उमरा करने के लिए, हज करने के लिए हम 20-25-30 लाख खर्च कर सकते हैं। तो हम ऐसी फैमिलियों को जिनके पास खाने को रोटी नहीं, अगर हम वो लगा दें तो आज के जमाने में, ये मैं आपको कह दूं, आप बता देता हूं कि आज के जमाने में भी अल्लाह ताला आपका घर बैठे हुए हज कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये इस्लाम की सबसे बड़ी तलीमात में से एक तलीमात है कि आप दूसरों की मदद करें। लेकिन हम नहीं, राजा साहब मन में घूम फिर कर इसी गर्मी में इसी तरह रहना। देखिए आज की जो यहाँ पे 27-28 गर्मी है वो हम बर्दाश्त नहीं कर
0: तो
1: सकते।
0: शाह साहब एक सवाल है, शाह साहब हमारी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारा काम कपड़ों से शुरू होता है, गाड़ियों से शुरू होता है, खाने पे खत्म हो जाता है, उसके बाद फोटुओं पे जाकर फिर उसके बाद एंड उसका हो जाता है। तो शाह साहब क्या हमारी मंजिल यही है?
1: राजा साहब आपने पुराने वक्तों में कभी गाँव में कभी गए थे या गाँव के लोगों को देखा था जो तंदूर की रोटी पे अचार रख कर या वो अपना थोड़ी सी चटनी रख के? तो शुक्र
0: हजारों लोग खाते थे।
1: तो उनको कभी आपने ये सुना था कहते हुए कि जी मेरा दिल करता मैं मुर्गी खा लूं, मेरा दिल करता मैं गोश्त खा लूं? आज हम
0: आज की वो सबसे मॉडर्न गजा है
1: जी, और हम लोग हराम खा खा कर, इवन आप ये देखें कि जिन रेस्टोरेंटों में कुत्ते और गधे का गोश्त और हराम बिक रहा है वहां पे भी हम जाके खाते हैं। फिर हराम का पैसा हमारे लोगों में रिश्वत लेना, रिश्तेदारी करनी,
0: सब छोटा बड़ा गोश्त मिक्स करके बेचना
1: जी, तो ये जो चीजें हैं इसको इसको फैलाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ से जाके वहां शोर ना मारे, अपने पैसों को अपनी जेब में रखें और अपने घर वालों को बड़ी बड़ी कोठियां ना बना कर दे, ठीक है जिस मकान में वो रह रहे हैं उसके अंदर उनको सहूलत दो, और उसके बाद उनको कोई ऐसी दुकान ऐसा कारोबार करके दे जिससे उनको चार पैसे मिले, वो कोई चार लोगों को नौकर रखे या कोई चीज चले
0: नौकर करे। शाह साहब आखिर में प्रोग्राम को क्लोज भी करें, शाह साहब कोई हाल भी साथ बताएं, बातें तो हमने बहुत ज्यादा कर ली है, कोई आपको लीडर नजर आ रहे हैं, कोई काम करेंगे या इसी तरह बातें होती ही रहेंगी?
1: जी अगर ये लीडर सिर्फ आम भी खाएंगे और आमों की पेटियां लेके जाएंगे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, हाँ मुझे दो बंदे जो हैं वो मुझे काम करते हुए इस गर्मियों में भी नजर आ रहे हैं, और ख्वाब लोग खुश हो ना हो मैं उनका नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा, एक आप रेडियो चला रहे हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ के हालात बता रहे हैं, और दूसरा जो है कोई बैठ के अगर वो बात कर रहा है और लिख रहा है तो वो सिकंदर मलक आज भी लिख रहा है, बोल रहा है, वहाँ उसके अंदर अग्रेसिव वो काफी है, गुस्से वाला काफी है, और एक सियासतदान को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चीज आती है वो बोल जाता है और इसकी परवाह नहीं करता। तो ये आप दो ही चीजें मुझे नजर आ रही है जो इस वक्त यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में भी आप लोग एक्टिव हैं, तो बाकी तो सारे जो हैं वो ठंडे होकर सो गए हैं, सत्तू पी के, वो आपके गांव का जो है शेख रशीद वो कहता है जी सत्तू पी के सारे सो जाते हैं। तो सत्तू अलग है, दुनिया में सबसे बेहतरीन गर्मियों में सबसे बेहतरीन मशरूब जो पीने वाला शरबत है वो सत्तू का होता था, सत्तू और गुड़ का, तो आज हमारे लिए वो हमारे गलों में फंस जाता है, गले पी नहीं सकते हम लोग सत्तू को। तो राजा साहब मैं अपने भाइयों से माजरत करता हूँ कि जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन अपनी नस्ल को अपने आप को बचाएं। अब ये आज उन्होंने एक खबर दी है कि अब लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल करने की बजाय कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कितनी जहीन कौम है ये, इन्होंने कैसी नजर रखी हुई है कि ये छुट्टियों पे गए हैं लेकिन वहां पे कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि पता ना लगे, लेकिन वहां पे कैश इस्तेमाल कर रहे हैं और कैश एटीएम में से कैश निकाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये नोटेबल है और इसकी प्रॉब्लम जो है आगे जाके आएंगी, क्योंकि इन्होंने कौम को कुछ ना कुछ तो दिखाना कि हमने क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड का मसला है ये अमेरिका ने बिल्कुल जैसे वो ईरान के साथ जंग खत्म नहीं कर रहा और अरबों को और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है, इसी तरीके से वो डेनमार्क और यूरोप के अंदर भी फसादात पैदा करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पेनीलेस हुआ हुआ है, भूखा हुआ हुआ है, इंग्लैंड भी भूखा हुआ है, और ये जो मुल्क हैं इनके पास सरमाए की कमी है, ये कर्ज में फंसे हुए हैं, और इनको क्या चाहिए, पैसा। ये पैसा कैसे ले सकते हैं कि ये अपना असला बनाए, असला इस्तेमाल करें, दुनिया में जंग हो और इनसे लोग असला खरीदें और ये जो है उस असला और बारूद बेच के तो ये पैसे जो है अपने घर लेके आए। तो राजा साहब ये हकीकत है, अगर आज भी हम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ेंगे और अपने आपको सही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे बातें हम रोजाना बातें भी करें तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। तो आप देखिएगा कि इस समर में तो हम बात कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि ये छुट्टियों के बाद जब टैक्सियों की नई सेल्सकेप जो है वो जारी और सारी हो जाएंगी और फिर क्रिसमस पे और उसके बाद जो है ये जो बड़ी बड़े सेल्सकेप हैं DSB यहाँ के रेलवे और दूसरी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जब वो ये सस्ती टैक्सियां जो हैं वो लेनी शुरू कर देंगी तो फिर वोनमैनों का क्या हाल होगा। वो बेचारे पसीने में जाएंगे क्योंकि वो इसी बात में खुश हैं कि इस वक्त हमें काम थोड़ा बहुत तो मिल रहा है लेकिन जब बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि जितने भी औगिफ्ट हैं वो तो उसी तरह ही रहेंगे तो वो कहाँ से पैसा लेंगे। तो राजा साहब ये तकलीफात अगर ये आज भी इसके ऊपर बहस नहीं करते, आज भी ये इकट्ठे नहीं होते और झूठ का झूठ बोलने में ये माहिर हैं और अगर ये झूठ बोलते रहे एक दूसरे के साथ तो फिर ये कभी भी सामने नहीं आ सकते। जी राजा साहब,
0: आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम शेयर किया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आप सबकी बात सुनते रहते हैं, सियासी तौर पर भी बात सुनते रहते हैं, सियासतदान अपनी बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो सियासतदान हैं जो डेनमार्क की सियासत को उन्होंने आजकल फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क की सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्ते आला चौधरी शौकत साहब जो है वो बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको बरतानिया की फिजाओं से कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चौधरी साहब, आप किस सिलसिला में गए हैं, कुछ सियासी मीटिंग के सिलसिला में गए हैं या कि वैसे भी गर्मी इंजॉय करने गए हैं?
2: नहीं राय साहब, मैं एक अपने गैदरिंग, अपने इवेंट था हमारा शादी का, फैमिली का, तो मैं उधर आया हुआ था। दो तीन दिन हो गए हैं शादी के सिलसिले में इधर आया था, क्योंकि हमारी फैमिली की एक शादी थी इधर लंदन में, तो उस सिलसिले में आया था शादी पे।
1: लेकिन चौधरी साहब, जो हमारे पास खबरें हैं, कुछ सियासी मीटिंग भी होनी है कुछ लीडरान के साथ, इसको ब्रेकिंग न्यूज दे ना।
2: कोई ऐसी बात नहीं है राय साहब, आपको पता ही है, मैं तो आपको पता ही है आस्ता आस्ता खुली किताब की तरह ही होता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा फिर आपको, पहले आपको ही बताऊंगा कोई सिलसिला इस तरह होगा
1: तो इसका मतलब है कोई बात है। चले चौधरी साहब, मौसम कैसा है बरतानिया का?
2: माशाल्लाह जी, मौसम बहुत, कल तो बहुत अच्छा था मौसम, टेम्परेचर भी बेहतरीन था और जो है ना गर्मी भी थी। आज थोड़ा सा जो है ना धूप नहीं है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल ही है, गर्मी की तरह टेम्परेचर है, 25-30 बस इस तरह का है, 23-25 के लगभग है टेम्परेचर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है जी इधर।
1: तो चौधरी साहब, सियासी माहौल को किस तरह फील कर रहे हैं बरतानिया का?
2: वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे मनज़म तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का कोई का वो इशू नहीं होता, लेकिन ये सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना रابطے रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेके इज्जत और इत्राम के साथ सब दोस्त भाई चलते हैं।
1: तो जो सब इज्जत इत्राम से ही चलना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की करके आगे निकल चुके हैं ना, तो हम अपने कानून ज्यादा अपने ऊपर सख्त करवाते जा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल राय साहब, यही है, हम जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ग्रुप बंदियां ही होती रहेंगी। तो ये सबसे यहाँ मैंने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने दोस्तों को, अगर वो एक दूसरे के साथ को आगे पीछे भी होते हैं तो वो दूसरों को बुला के कहते हैं यार इनको साथ मिलाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी एक बड़ा धड़ा हो, तो जो अपने साथी है उनको छोड़ के नहीं जाते, ये सब जो साथी पुराने भी होते हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा होगी, हमारी पार्टी बड़ी होगी और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। तो ये दो चार बंदे हम खड़े होके कहें कि हम पार्टी है हमारी, तो इस तरह से इज्जत नहीं बनती, तो ये लोगों का मौकफ और तरह से होता है। ये सब दोस्तों को देखा है मैंने, ये सब को साथ लेके चलते हैं।
1: चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप काफी मसरूफ है मेहमान आपके पास बैठे हुए, इंशाल्लाह आप जल्दी वापस आ जाएं।
2: जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, जब आएंगे इंशाल्लाह रब्ता होगा, बहुत
1: मेहरबान। सामान नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत सरपरस्ते आला जिनकी आप बात सुन रहे थे।
3: सामान नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है। अल्लाह।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। सामान, मौसम जो है वो गर्म है, ठंडा है, टेम्परेचर ठीक हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। ये मौसम जो है सियासत की तरह चलता है, जैसे सियासत ठीक भी हो जाती है, तब्दील भी हो जाती है। तो आगे आप बात सुन रहे थे शाह साहब की, तो मुजीब साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के यहाँ डेनमार्क में सदर हैं और SF पार्टी के जो हैं वो मेंबर हैं और सियासत में गहरी नज़र रखते हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि वो डेनमार्क की सियासत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उस पर अमली बात भी करते हैं। तो मुजीब साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। मुजीब साहब, मौसम तब्दील होता रहता है जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है। पहले दूसरे मुल्कों की सियासत होती थी, अब डेनमार्क की सियासत भी सुबह दोपहर शाम तब्दील होती रहती है, तो क्या खबरें आपके पास?
2: देखिए, सबसे पहले तो आज 5 जुलाई है और आपको पता है कि 5 जुलाई 1977 को एक डिक्टेटर ने जमहूरी निज़ाम के ऊपर शबरोज मारा। तो वो जो जमहूरी निज़ाम को एक डिक्टेटर ने 5 जुलाई 1977 को ख़त्म किया, उसकी आज हम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी एक अभी थोड़ी देर के बाद पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग भी है। तो राय साहब, ये है कि मुल्क की तरक्कियों के लिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ का तसलसल जो है ना वो लगातार।
1: आपने जिक्र किया मजम्मत का, तो उसके बाद आपने टाउन हॉल या पार्लियामेंट के सामने तो नहीं जाना?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जो है जैसे जमहूरियत के में आप एहतजाज करते हैं वो हमारा एहतजाज होता है, हम वो वाले ऐसा एहतजाज हम नहीं करते कि जिससे जो है ना किसी को डिस्टर्बिंग हो। हमारा एहतजाज सबको पता है, 49 साल से इसका एहतजाज कर रहे हैं। वो जनरल ज़िया-उल-हक़ के एक डिक्टेटर था, एक डिक्टेटर अल्लाह ताला उसकी मफ़त फरमाए, वो फोत हो गए हैं, लेकिन एक डिक्टेटर था, उसने एक जमहूरी निज़ाम को तबाह किया और आज वो जमहूरी निज़ाम अगर कायम रहता, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जिंदा रहते, तो मुल्क की जो है तरक्की उसमें बेहतरी आती, मुल्क में बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहा था। उस वक्त के दौर में आपने देखा एटम बम की तरफ हम गए, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में आपका नाम हो रहा है। उसके अलावा आपने इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई, सबसे जो बड़ा काम देखे उन्होंने किया, जो मैं समझता हूँ कि वो जयंती होगी, उन्होंने कादियानियों को काफर करार दिया। उसके अलावा बेशुमार चीजें हुई जो कि मुल्क के लिए बेहतर थी, लेकिन क्योंकि जो ये सोनी ताकतें जो होती हैं ये हमारे लोगों को इस्तेमाल करके अच्छे लीडरों को फिर जाया करवा देती हैं, तो मैं एज ए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस डिक्टेटरशिप की मैं मजम्मत कर रहा हूँ। और ये मजम्मत जो है आपको पता है कि हमारे एहतजाज का तरीका होता है, जरूरी नहीं होता कि आपने सड़कों पर जाके कोई आपने डंडे उठा के लेके जाना है जी हम आज मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये सबक नहीं सिखाया गया, हमें एहतजाज करने का तरीका का एज ए जमहूरियत के तरीके से सिखाया गया है, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। बाकी अब आ जाए अगर यहाँ पे लोकल सियासत की, तो आपको पता है छुट्टियों पे है सारे लोग, कमून भी छुट्टियों पे है, रीजन भी छुट्टियों पे है, पार्लियामेंट भी छुट्टियों पे है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग डेनमार्क में भी छुट्टियां गुजार रहे हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। मौसम आपको पता है कभी पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा था, अभी कभी अंगड़ाई लेता है, कभी सूरज सामने आ जाता है, कभी बादलों के पीछे चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें चल रही हैं और बाकी मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, अपनी कम्युनिटी का मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो ये है कि
1: कम्युनिटी का मौसम तो चल रहा है कि, और एक खबर जो है मेरे सामने भी पड़ी हुई है, पता नहीं आप तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब खामोश लीडर हैं चौधरी अशरफ साहब, और खामोश लीडर हैं मलिक नज़ीर साहब, और तीसरे आप भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो सुलह में ये कुछ सुलह की बात, उसमें कुछ छोटी मोटी जो है वो खबरें किसी ने मेरे कान में डाली हैं, आप इसकी तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं?
2: जी ऐसी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि चंद भाई जो है वो कोई 15-20 लोग बैठे थे उस दिन, बड़े सारे मोजज लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, चौधरी जहाज साहब थे, चौधरी इफ्तखार साहब थे और बेशुमार नाम जो के कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, अगर नदीम साहब उसमें मौजूद थे, तो बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे इन दोनों भाइयों ने सुलह की और उसमें सब ने खुशी का इजहार किया और सब मुतमिन हुए और हम भी बहुत खुश हुए। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम है दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह होनी। और फिर आप कम्युनिटी में जितने हम लोग हैं, हम वो लोग हैं कि अब हम एक दूसरे को नजर में रहते हैं, लेकिन ये किसी का वक्त किसी भी खुशहास हो सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का दिन मुकर्रर किया हुआ है, तो फिर हमने एक दूसरे को कंधे देने हैं, हमने एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये परसों ये दो तीन दिन की पहले की बात है, ये बहुत ही अच्छा सुकून था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों भाइयों में सुलह हुई।
1: जी, सुलह को हमेशा अच्छा ही पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मुजीब साहब, आपकी पार्टी क्या कर रही है? कानून तो बहुत सारे तब्दील हो रहे हैं, बन रहे हैं, सख्तियाँ आ रही हैं, और हमारे थिंक टैंक आते हैं कि सख्तियाँ हमारी अपनी वजह से होती हैं।
2: बिल्कुल, आपकी बात तो दुरुस्त है जी। सख्तियाँ हमारी अपनी वजह से, मुराद को आप पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम नहीं लेते, सारे फॉरनर जहाँ पे है ना, तो उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं है, हर बंदे की जो है अपनी सोच है हर बंदे की। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसमें आप ये देखें कि हमारे जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे जॉब जॉब्स पे हैं, और उनका एक सोसाइटी में नाम है, तालीमी लिहाज से भी माशाल्लाह हम सबसे आगे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी कम्युनिटी में जब आप यहाँ पे बात करते हैं उलैना की, ये फॉरनर्स की, तो उसमें खाली पाकिस्तानी नहीं है, उसमें तो सारी कम्युनिटीज आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी, मैं बाकी कम्युनिटीज को भी कोई ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी नहीं है, बाकी कम्युनिटीज में भी बेशुमार लोग बहुत अच्छे हैं, उनके भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी अच्छे जॉब्स में हैं। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह हमारे यंग जनरेशन के बेटे बेटियां वेल एजुकेटेड, अच्छे जॉब्स, और वो कानून को भी समझते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं राय साहब के, जो जो हमारी पॉलिटिकल जमातें हैं ना, जो डेनमार्क की हैं, वो भी अपने कार्ड्स खेलती हैं ना, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने होते हैं, उन्होंने भी आगे जाना होता है, उन्होंने भी कुछ बात करनी होती है, अपनी को अपनी कौम को बताना होता है, देखे जी हम ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी छुट्टियां खत्म होगी इंशाल्लाह अक्टूबर में, तो जैसे भी कोई अगर हमारे ऐसी चीज के खिलाफ आती है बात, तो हम इंशाल्लाह, मैं SF की जमात में जाके उसकी उसकी आवाज बनेंगे, हम आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि हर चीज जो है अक्टूबर के बाद आस्ता आस्ता बेहतर होनी शुरू होगी।
1: मुजीब साहब, बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस हो रही है हर मस्जिद में, कल्चर सेंटर में, आप क्या कहेंगे?
2: जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अमन का पैगाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, उन्होंने अमन का पैगाम दिया, उन्होंने एक वो वाला सबक हमें अता फरमाया कि जो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। उन्होंने नमाज की तलकीन की, देखें नमाज की उन्होंने तलकीन की, और अपने नाना का जो है वो इस्लाम है उसको उन्होंने जिंदा किया। आज मुसलमान अगर इस्लाम अगर जिंदा है, तो करबला के बाद आपको पता है इस्लाम जिंदा है, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। वो जो आपने देखे ना, जिस जे आपने शेर भी सुना होगा, रसूल नाना बाबा अली है।

0: ग्यारह को भी कोई आया, कोई 19 को भी है। तो देखिए लोग इसमें भी मसरूफ हो रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यही भाईचारे का एक तरीका है, आपस में मोहब्बत पैदा करनी है, आपस में इत्तफाक पैदा करना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमे।
1: जीप साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया।
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: सामान नाज़रीन, ये थे डेनमार्क पीपल्स पार्टी के सदर मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, जो कि यहाँ डेनमार्क की एसएफ पार्टी के मेंबर हैं।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।